0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य शाम।

नमस्कार, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 23 तारीख, तदनुसार 13 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 10 सेकंड हुए हैं। हम अपना आज का प्रसारण आपके लिए आरंभ कर रहे हैं।

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, 6 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द

0: कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, 6:05 मिनट हुए हैं। अब हमारा प्रसारण हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। सबसे पहले आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदनवार।

भूल यदि हो जाए तो चिंता करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। बजकर 35 मिनट पर यानी अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 187।

6:45 पर और शाम को पुनः 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का भाग दूसरा प्रसारित होगा। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। नौ बजकर 30 मिनट पर आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मनहर उदास पर। 10:00 सुनिएगा

2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं, साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की, शब्द हमारे विचार आपके इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी आत्मविश्वास की और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान, शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 8:00 कार्यक्रम चित्रलोक से पहले 8:00 रात्रि 8:00 आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी ना बाबा ना, लेखन संजय श्रीवास्तव का, निर्देशक गोविंद पारिक। और 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात। और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 187 सुनेंगे।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबर फोड़ डाली और छोटी पकड़कर उसे खसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी।

0: हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिनसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, वो हैं आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास।

0: जलोटा जी, तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त हुआ।
1: पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे, उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया जिसमें एक मैं भी हूँ, और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके, और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूंगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना, रे तक नहीं पहुंचना
0: जी।
1: तो 3 घंटे मैं सिर्फ सा गा रहा हूँ। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है, रे गा रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि वो जो स्वर है उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर लिया, तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी रियाज करवाया। साथ ही साथ मुझे कहते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज रियाज जो है वो आईने के सामने करो, कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पैर ज्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए, बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है, उनकी कृपा उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा, और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूं और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूं जो उन्होंने किए हैं। तो अधिकतर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिताजी का ही है और मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूं।
0: आपने कहा कि पहले दिन उन्होंने सा लगाने को कहा, दूसरे दिन रे, तो हमें बताइए कि 7 सुर कितने दिन में पूरे हुए थे और पहली बार उनके सामने आपने जब परफॉर्म किया तो क्या अनुभव था, कैसी यादें हैं?
1: नहीं, वो 7 सुर जब पूरे हो जाते थे फिर से 7 से शुरू करा देते थे।
0: अच्छा,
1: तो ये सिलसिला चलता रहता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ अब सुर जो है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाओ साथ साथ, लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी
0: जी। अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहली?
1: मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी जी।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनकी गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे।
1: पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग बिहाग में लट उलझी सुलझा जा बालम, इतना अच्छा सुंदर गाते थे। एक दिन मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लट उलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन

0: उन्होंने जसराज जी ने राग बिहाग गाना शुरू किया कि इतना सुंदर बिहाग कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊंगा, उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है जो प्रचलित राग नहीं थे, उनको भी प्रचलन में लाए।
1: और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए।
0: मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम जरा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया, 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख पाता।
1: तो हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: हाँ, एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पिताजी का गाया हुआ ये भजन पूरा सुनाया जाए।
1: जी।

0: खुशी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जय।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे बाय
0: बिका।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना
5: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत में ये पहला गीत अभी आपने सुना, फूल बने अंगारे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अगला गीत सुनते हैं। नगमा फिल्म से ये गीत है शमशाद बेगम की आवाज में, नाशाद का संगीत पद किया गीत।

0: शमशा बेगम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नगमा से। आइए अब सुनते हैं एक संदेश।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत आह फिल्म से। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

गीत आपने सुना फिल्म आह से, लता मंगेशकर का गाया गीत था, हस्ते जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे हम फिर मिलते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी का गाया गीत, राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत है, बुलो सी रानी का संगीत।

0: जाने वाली ये गीत अभी आप सुन रहे थे हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी की आवाज में। आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब आपको सुनवाते हैं 2 बीघा जमीन फिल्म से शैलेंद्र का लिखा, सलील चौधरी के संगीत से सजा गीत, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के स्वरों में।

दो बीघा जमीन इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों की स्वरों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म से किशोर कुमार और साथियों का गाया गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है एसडी बर्मन का।

अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। पीछे बांध ली घोड़ों को मुझको जेल भेज दो, घूमने में क्या है ये जवाब थानेदार।

0: बना बिठा ले ते गिरा तो हम न कर
1: पावनर बना बिठा ले ते गिरा तो हम न कर
2: अरे खाए राम जी के साथ नमन नक उधार दे
1: खाए राम जी के साथ नमन नक उधार दे
0: पावनर बना बिठा ले ते गिरा तो हम न कर
1: खाए राम जी के साथ जब तलक उधार दे चाहे बोली कुछ हो जाए गालियां हजार दे
2: अरे बचना हम बन के जिंदगी के दिन उधार दे
3: तेरे की हवा निकल गई।

0: अरे मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, चाहे कोई कुछ हो चाहे गालियां हजार दे, मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, चाहे कोई कुछ हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, मत राम मत राम अरे मत राम मत राम मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त राम मत राम मत राम
1: टैक्सी ड्राइवर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत की आखिरी प्रस्तुति शबाब फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत, शकील बदायूनी के बोल है और संगीत है नौशाद का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील मदायूनी की रचना थी, संगीत था नौशाद का और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न हुआ।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

चाचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामू और उज्जवल बनाए। वीको टर्मर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

हम है राही प्यार की ये कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में लेकर हम हाजिर होंगे। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं हूँ आपके साथ पूजा नारायणिया और कार्यक्रम हम ही रहे प्यार के में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको सुनवाती हूँ ये पहला गीत विश्वास फिल्म से मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में गुलशन बावरा की बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत गुरबानी फिल्म से। कंचन, मनहर उदास और आनंद की आवाजों में इंदीवर का संगीत है।

0: कुर्बानी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मनहर उदास, कंचन और आनंद की आवाजों में।
1: मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जाए।
0: लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर
0: लूं। यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम हम ही राही प्यार के में अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

छोटे से अंतराल के बाद हम ही राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल मंजिल फिल्म से गीत आशा भोसले शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

0: अरे कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आइए आपको सुनवाते हैं नदीम श्रवण का केस धुन से सजा गीत। गीतकार है समीर और अनुराधा पोडवाल मनहर उदास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है सड़क।

अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म सड़क से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लावा से अगला गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लावा फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और ये गीत बना कार्यक्रम हम ही रहे प्यार की आखिरी पेशकश। इसी के साथ कार्यक्रम हम ही रहे प्यार की यहीं संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय आठ बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है।

0: चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन

0: निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए।

0: हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 8:15 हुए हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और फिर उसके बाद चित्रलोक। ये कार्यक्रम हम आपके लिए विविध भारती की मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। त्रिवेणी

0: साथ ही इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहां है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आज

अपनी परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, यह बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

0: तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम खुल के ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, दौलत हराम की है ये किस काम की, हलो कसम इससे हाथ न लगाएंगे, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ भरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

सर्वो सब करते

0: तो जालिम अंदर चोट भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब दी जिसने मुझे इतने चुनौतियों से इन चीजों को थमार दे और सरकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मेरे पास जाने की उड़ान नौकरी, उस परिंदे में जाने की, और जब जिजी म्यूजिक के साथ शुरू हुआ, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। पहला गीत सलाम नमस्ते, इस फिल्म से कुणाल गंजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जयदीप सहनी का लिखा गीत, संगीत विशाल शेखर का।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: रेड टू फेंसी जुबिन नौटियाल का गाया गीत, मनोज मुंतशिर, पूनम अलाहाबादी, नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान संगीतकार हैं.

दम लगा के है शाय स्वन से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत। वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा।

0: दमलका की ऐशा फिल्म से कुमार सानू और साधना सदन की आवाजों में आपने गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है

0: तिरंगा था देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए तो पंक्ति

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जावेद अख्तर का लिखा, शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा, सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

0: श्रोताओ, इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त हुआ है एक अंतराल का।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो।

0: और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
1: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से। सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं।

अलविदा ना कहना फिल्म से अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनाते हैं दिलवाले फिल्म से अगला गीत। अमित मिश्रा, अनुष्का मंजिंदा, अंतरा मित्रा का गाया गीत। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और धुन बनाई है प्रीतम ने।

गीत था फिल्म दिलवाले से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज ने। निमेश मिश्रा का लिखा गीत है, धुन इस बार फिर से प्रीतम की बनाई हुई और फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

0: बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: Work from home? High salary? This is Flipkart. अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जीगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जीगर का ही संगीत है।

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहीं आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु वेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा विजय सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार है रकीब आना। देवीश्री प्रसाद का संगीत है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जो आपने जिसने मुझे इतने चयन से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मेरे पास जाने कितने उड़ान नौकरी, उस पर इंडिया में जाने की, और जब डीजी म्यूजिक के साथ शुरू हुए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

व्यापा फिल्म से गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और जहरा इस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

कुमार का लिखा गीत था, चित्तरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुड़ी नौटियालमती मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, मत की आएगी।

रवीन नाटिया या अनिति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इशाद कमल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

0: फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधरों का भी कविता सेठ की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायण को नमस्कार। आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए श्रोताओं अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:30 हुए हैं। बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार।
1: कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
0: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
0: प्रोग्राम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। जी तो कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं, खुश हैं, मजे में हैं? भाई हम जानते हैं हमारे श्रोता बहुत जागरूक हैं, अच्छे से ये बात समझते हैं कि स्थिति चाहे कोई भी हो, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन हमें हंसते मुस्कुराते हुए ही जीवन जीना चाहिए और उदासी को, गम को, निराशा को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना चाहिए। तभी तो भाई हम आपसे तकरीबन हर दूसरे दिन इस विषय पर बातचीत करते हैं कि हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिविटी को अपने जीवन से एकदम से कहते हैं ना बेदखल कर देना चाहिए। नेगेटिव लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, उनके आसपास भी आप ना रहें तो बेहतर होता है। और वैसे भी ना कहते हैं कि हंसता हुआ चेहरा ही सबको अच्छा लगता है। आप अपने चेहरे पर उदासी ओढ़ लेंगे, खुश नहीं दिखेंगे लोगों को, आपकी बातों में निराशा झलकेगी, तो फिर भला कौन आपके साथ उठना बैठना पसंद करेगा? नहीं होगा ना ऐसा? तो भाई हमारी सलाह आज भी आपको यही है कि आप खुश रहिए और खुश रहकर ही, संतुष्ट रहकर ही, अपने आप में संतोष पैदा कर ही आप ये जो जिंदगी है ना, जो ईश्वर ने हमें ये जो अनमोल तोहफा दिया है जिंदगी का, इसे बड़ी आराम से, बड़े सुगम तरीके से, प्यार से बिता सकते हैं। और देखिएगा फिर जिंदगी का ये जो सफर है ना, कैसे कट रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ लेकिन हमें जरूर पता चल रहा है कि हमारे श्रोता जो हैं रेडियो सेट्स के बिल्कुल पास बैठ चुके हैं, क्योंकि इंतजार रहता है आपको हर रोज सुबह 9:30 पर इस प्रोग्राम का।

नाम है जिसका आज का अखबार। और आज इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सुनीता भगत। तो भाई शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी आज हमारे प्यारे बच्चों की। हाँ भाई, हमारे बच्चे आजकल कहते हैं ना, उन पर दृष्टि है सबकी। अब देखिए ना, परीक्षाएं हुई, परिणाम निकले, कुछ के निकल रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास हो गए हैं, परिणाम उनका बड़ा अच्छा आया है, मेहनत की उन बच्चों ने।

परीक्षाएं हुई, परिणाम निकले, कुछ के निकल रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास हो गए हैं, परिणाम उनका बड़ा अच्छा आया है, मेहनत की उन बच्चों ने। कुछ बच्चे जो हैं भाई, मेहनत तो वो भी करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी थोड़े से उनके अंक जो हैं वो कम आ जाते हैं। बाकी बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के अंक थोड़े कम आते हैं, मार्क्स जिनके थोड़े से कम रह जाते हैं, तो वो उदास हो जाते हैं। और कभी कभी उनके दिमाग में कहते हैं ना कि वो जो नेगेटिविटी है वो आ जाती है। तो ऐसे में मैं बात करना चाहूंगी सारे पेरेंट्स जो इस समय सुन रहे हैं, घर के जो बड़े सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, आप तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमारा फर्ज है, आकाशवाणी का ये फर्ज है कि आपको हम कदम कदम पर इस तरह की बातें भी समझाते रहते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंक कम आए भी हैं, वो निराश है, उदास है और उसे लग रहा है कि बस जीवन जो है बस यहीं पर समाप्त हो गया है, तो आप उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि जो असफलता है वो अंत नहीं है, ये सीखने का और जिंदगी में आगे बढ़ने का एक अवसर है, ऐसे आप उनको समझा सकते हैं। अब जब बच्चे किसी काम में सफल नहीं हो पाते ना, तब उन्हें डांटिए मत, उन्हें डांटने की बजाय उनका हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे आप कह सकते हैं कि हारना बुरा नहीं है, और हाँ, कोशिश छोड़ देना बुरा है, ऐसा आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। उन्हें भरोसा दिला सकते हैं ना आप कि हम आपके साथ हैं और आपकी मेहनत जो आपने की है वही सबसे बड़ी जीत है। बच्चों को आप समझाइए कि हर सफल इंसान ने कभी ना कभी असफलता का सामना जरूर किया है, और असफलता हमें अपनी कमियों को पहचानने और बेहतर बनने का भी मौका देती है। आप जानते हैं जब बच्चे इस तरह का प्रोत्साहन सुनते हैं, पाते हैं ना, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो बहुत बढ़ जाता है। दोबारा वो प्रयास करते हैं और वो भी पूरे उत्साह के साथ। अब एक छोटी सी तारीफ अगर आप बच्चे की कर देंगे, कुछ प्यार भरे शब्द उनको कह देंगे, अपना विश्वास उनमें आप जताएंगे ना, तो भाई ये सारी बातें बच्चों के मन में ना एक नई उम्मीद जगा सकते हैं। तो उन्हें आप ये समझाएं कि गिरकर संभलना ही जिंदगी की असली सीख है।

जी, बस ऐसे ही हमने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है और जिंदगी की राह पर में चलना सिखाना है, हौसले के साथ और हिम्मत के साथ। तो हमारे श्रोता इस समय सुन रही हैं प्रोग्राम आज का अखबार। भाई अखबार है तो अखबार की सुर्खियां भी आप तक पहुंचानी ही है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले करेंगे अपने देश की बात। पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा स्थगित की। 3 मई को हुई परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। एनटीए डीजी ने कहा है परीक्षा दोबारा होगी। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद देने की बात कबूलने पर चीन को भारत ने दिया स्पष्ट संदेश। विदेश मंत्रालय ने कहा है आतंकियों का बचाव करने वाले अपनी साख देखें। सरकार ने सोना चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सोने चांदी पर ये इंपोर्ट ड्यूटी 4.35% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। भारत की सहायता से नेपाल में रखी गई एक स्कूल भवन की आधारशिला। सुदूर पश्चिम प्रांत में बनने वाले स्कूल भवन के लिए भारत 10 लाख नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता देगा। प्रधानमंत्री की अपील का हुआ असर, सोने की खरीद में आई भारी गिरावट। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उधर हिमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने। कैबिनेट में 2 भाजपा और 2 सहयोगी दल के मंत्री बनाए गए हैं। शरद पवार ने पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय हित मामलों में सभी दलों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। लगभग 69 दिन का कच्चे तेल का स्टॉक है जबकि एलपीजी का 45 दिन का स्टॉक है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय सभ्यता में गणित के योगदान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शून्य और दशमलव प्रणाली, बीज गणित और खगोलीय गणना जैसे भारतीय योगदानों को प्रदर्शित किया गया। वहां आर्यभट्ट और भास्कर जैसे विद्वानों की परंपरा को दिया गया सम्मान। पश्चिम एशिया संकट के चलते दुनिया भर में उठाए गए हैं कई कदम। 40 देशों में ईंधन की हुई राशनिंग, कड़ी नीतियां लागू की गईं, सरकारी यात्राएं सीमित की गई हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, एलपीजी की खपत की कम, सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग की गई है शुरू। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कार पूलिंग की बात हुई तो आपको हम बता दें, जानकारी दे दें आपको, आज सुबह 10:05 पर आप जानते ही हैं हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम होगा। तो श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हमने भी जो विषय चुना है वो यही है, सुन लें आप ध्यान से। आज का विषय है हेलो चंडीगढ़ में ईंधन बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल अपनाएं। तो हमें कीजिएगा आप टेलीफोन

आपकी टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचारों की सुर्खियों का। स्कॉटलैंड में छात्र वीजा पर पहुंचे भारतीय युवा क्यू मणिवन्नन बने हैं संसद सदस्य। स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल नागरिकों को चुनाव लड़ने की है अनुमति। खाड़ी देशों में ब्रिटेन सहयोगियों पर होने वाले सैन्य हमलों को रोकने के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था के नुकसान को रोकने के लिए ब्रिटेन ने अपनी धरती पर आपराधिक गिरोहों के इस्तेमाल के खिलाफ ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के दबाव को माना जा रहा है इसका कारण। पाकिस्तान में गहरा ऊर्जा संकट गहराया। 60% सरकारी वाहन किए गए बंद। विदेशी दौरों पर भी लगी है रोक। ईंधन भत्ते में 50% की कटौती की गई है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सख्ती बढ़ाई गई। खर्चा कटौती अभियान पाकिस्तान में 13 जून तक बढ़ा दिया गया। हंटा वायरस के संपर्क में आए 3 और लोगों में मिला है संक्रमण। यात्री अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के हैं। अब कुल 9 केस हो गए हैं। अब तक 3 की हो चुकी है मौत। ईरान युद्ध पर घिरी ट्रंप सरकार। सांसदों ने पूछा कब खत्म होगा संघर्ष। हथियारों की कमी और खर्च पर भी किए गए उन्हें तीखे सवाल। अमरीकी संसद में युद्ध खत्म करने की मांग तेज हुई। तो हमारे श्रोता बने रहिए हमारे साथ। अभी स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे, प्रादेशिक भी होंगी, खेलों की बात भी होगी भाई, और मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। फिलहाल रुकते हैं और सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

जी तो आप सुन रहे हैं इस समय प्रोग्राम आज का अखबार। तो स्थानीय सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज सुबह 11:30 पर संजीवनी कार्यक्रम होगा। आज का विषय है गट हेल्थ। डॉक्टर संदीप भाटिया के साथ की गई बातचीत इस विषय पर हम आपको सुनवाएंगे।

अब कर लेते हैं ट्राई सिटी की बात। चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, सेना पुलिस या अर्धसैनिक बलों से जुड़ी वर्दी कपड़े स्टिकर लोगो या झंडे के बिना पहचान पत्र देखे बगैर नहीं बेचे जाएंगे। 60 दिनों तक लागू रहेगा ये आदेश। बसों में ट्रैकिंग सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा शुरू। परिवहन मंत्री बोले, जल्द 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। प्रदेश सरकार रक्षा एरोस्पेस ईवी और पैकेजिंग क्षेत्र को मजबूत करेगी। उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड ने कई परियोजनाओं को दी है मंजूरी। डेंगू और प्लेटलेट्स टेस्ट की फीस हुई है तय। सरकारी अधिसूचना के अनुसार निजी क्लिनिक 600 रुपए से अधिक पैसे नहीं वसूल सकेंगे। चंडीगढ़ रेड़ी फड़ी और अवैध वेंडरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को दिया है आदेश। अवैध वेंडरों को तुरंत हटाएं, लंबित अपीलों का करें तुरंत निपटारा। चंडीगढ़ की नर्सिंग ऑफिसर पूनम वर्मा को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। मोहाली में नगर निगम के चुनाव की तारीख हुई घोषित, नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। सेक्टर 67 नाइपर में मेडिकल डिवाइस विभाग में 2 सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ शुभारंभ। आईटीईसी प्रोग्राम भारत सरकार की प्रमुख पहल है। मोहाली में हुई 4th मोटिवेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में 8 से 10 वर्ष के आयु वर्ग में भानिश वर्मा ने जीता सिल्वर मेडल। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला नगर निगम चुनाव की मतगणना आज। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है। आम नागरिकों से अपील की, निर्धारित समय यानी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वैकल्पिक मार्गों का ही करें इस्तेमाल। पंचकुला सेक्टर 1 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया की दी गई ट्रेनिंग। आगामी सत्र में प्रवेश प्रक्रिया को बनाया जाएगा अधिक सुगम और पारदर्शी। पंजाब हरियाणा और हिमाचल की बात करते हैं। पंजाब में किसान अब खेतों में पर्यटकों को उपलब्ध करवा सकेंगे होम स्टे। खेतों पर ठहर सकेंगे देसी और विदेशी मेहमान। किसानों के लिए बनेगा कमाई का एक और जरिया। पंजाब सरकार ने फार्म स्टेट पॉलिसी लॉन्च की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स और उनके परिवारों से मुलाकात की, स्कॉलरशिप के चेक सौंपे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 12:30 पर घोषित करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट www.pse

0: www.ac.in पर जाकर परिणाम देख सकेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है छात्रों के लिए, ये नंबर है 9549161161। फिर से सुन लें हेल्पलाइन नंबर 9549161161। अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति को दिया जा रहा अंतिम रूप, मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों के हेल्थ पैकेज का होगा वेरिफिकेशन। हाईकोर्ट ने 3 महीने में मांगी है रिपोर्ट। मरीज को अब उसकी भाषा में ही समझानी होगी पूरी लागत। सस्ता पैकेज दिखाकर बाद में वसूली पर लगेगी रोक। कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी और अंबाला में 5G मशीनों से राशन वितरण हुआ शुरू। 31 मई तक प्रदेश भर में संचालन का है लक्ष्य। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की 12 दिन की हड़ताल के बाद आज होगी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से बातचीत। हिमाचल में हाईकोर्ट ने दिया फैसला, भारतीय नियमों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो नियुक्ति की मांग करने का नहीं है हक। खाली हुए पद पर नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं जता सकते। केवी धर्मशाला छावनी में 11वीं की खाली सीटों पर प्रवेश हुआ शुरू। आज का अखबार प्रोग्राम में अब खेलों की सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। आईपीएल में कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अंक तालिका में अब गुजरात 16 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि बेंगलुरु 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 21-19, 21-23 और 21-10 से हराकर जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश ने 104 रनों से पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीत लिया। ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार फुटबॉल इंडियन विमेंस लीग खिताब जीता और सीनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन वर्ग में हरियाणा के पहलवानों ने जीते 26 पदक। मौसम की बात करें तो देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी है। खासकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बारिश आज हो सकती है। चंडीगढ़ शहर की बात करें श्रोता, तो अगले 5 दिनों में 41 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। कल तक तेज हवाएं चल सकती हैं, हल्की बारिश के भी हैं आसार। फिर 16 मई से बढ़ेगी गर्मी। और शहर का कल का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 22 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर, कल सूर्योदय 5:30 पर होगा।
1: सुना है यहाँ सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का।

0: जी, तो आज का आपका क्या प्रोग्राम है भैया? आप जो भी प्रोग्राम बनाएं, बस सुरक्षित रहिएगा और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले ये एक संदेश आपके लिए।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको, तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो।
0: तो अब श्रोताओं, कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: आज का अखबार।
0: 10 बजने को ही थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय N रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामालिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम TV के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब TVK के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी K पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TVK सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक S कामराज को TVK सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने CBI को अनियमितताओं की व्यापक जाँच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन

0: मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10:05 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।

0: प्रोग्राम सुन रही सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो भी कुछ आपकी और कुछ हमारी, जी बातें जो हम करने वाले हैं आज इस प्रोग्राम में, उसका विषय जो है वो है ईंधन बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल अपनाएं। अब देखिए ना, ये तो हमारे सभी श्रोता जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले 2-3 दिनों से पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि भाई पश्चिम एशिया का जो युद्ध का संकट है वो और अधिक गहरा सकता है, तो हमें बहुत समझदारी से काम लेना है और ईंधन बचाना है। तो हमने सोचा कि आज अपने श्रोताओं से हम इसी विषय पर बात करें। अब हमारे श्रोता तो बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, तो ज़रूर अपनी बात वो हम तक पहुंचाना चाहते होंगे और जो हमारे दूसरे श्रोता हैं उनसे भी कुछ ना कुछ साझा करना चाहते ही होंगे। तो चलिए फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं और लेते हैं इस प्रोग्राम की ये पहली कॉल। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: जी राकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, शिमला कैसे हैं आप? ठीक हैं? शिमला के क्या हाल चाल हैं?
1: शिमला के बहुत अच्छे हैं और अभी मौसम सुहाना है और बहुत अच्छा।
0: जी जी, मौसम सुहाना है वहाँ पर और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे पर्यटक पहुँच चुके होंगे और अपनी अपनी गाड़ियों से भी बहुत सारे लोग आते हैं, कार से आते हैं। कितनी भीड़ देख पा रहे हैं आप इस समय वहाँ पे कारों की, गाड़ियों की?
1: जी जी जी जी, देखो शहर में मैं न्यूज में सुनता हूँ शहर में बहुत भीड़ हो रही है और अपने क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ जो माला जो पृथक स्थान है वहाँ भी बहुत भीड़ हो रही है। और कहीं ना कहीं हमारी एक समस्या ये है, अगर मानो कि अगर आप लोगों जहाँ आधे घंटे का रास्ता है, आपको अगर आधे घंटे का रास्ता है जाने का, अगर मानो कि हमने आधे घंटे रास्ते में कहीं जोर जाना पड़ा, लोग क्या करते तब भी गाड़ी को दौड़ा लेते हैं।
0: हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। क्या है कि लोग चलना कुछ बंद कर चुके हैं, आराम तलब हो गए हैं बहुत।
1: और सबसे बड़ी बात है, परसों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, तो उनने वो कहा कि आपको कुछ दिनों तक जो है आप ईंधन की बचत करनी पड़ेगी पश्चिम एशिया के कारण।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बिल्कुल। तो ये

0: कहीं ना कहीं तो ये उस ये महामारी से उसने नहीं किया हुआ जब तक सामान्य स्थिति में थी तब तक, ये तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए यही बात बार बार सब लोग समझाना चाह रहे हैं सब लोगों को कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और इसका कुछ पता भी नहीं है कि ये स्थिति कब तक ऐसी रहेगी और कब तक सामान्य होगी,
0: तो तभी तो ना, जैसे कि हमने कोरोना टाइम में लॉकडाउन में हमने जो प्रयास किया था कि जैसे कि जैसे बच्चों की ऑनलाइन कक्षा और कुछ कुछ अगर हमें जरूरी जाना पड़े तो एक गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार मानो कि हम अगर आप पांच फैमिली के पांच लोग हैं, अगर आपके पास पांच लोग के पास आप अलग अलग गाड़ी है तो फिर आप अलग अलग वाहन का प्रयोग करें, आप एक ही वाहन में भी।
1: बहुत सही बात कही है आपने, बहुत सही बात की है। दरअसल आजकल हो ऐसा ही रहा है कि जितने भी सदस्य हैं एक परिवार के सबके पास तकरीबन अपनी अलग अलग गाड़ी है, चाहे वो कार के रूप में हो या स्कूटर या मोटरसाइकिल के रूप में हो। तो करना हमें यही है कि अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं परिवार के सभी सदस्य तो कोशिश यही करें कि एक ही वाहन का इस्तेमाल करें।
0: और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अगर मानो कि जैसे कि मैंने भी कहा था कि आधा घंटा का रास्ता है आपको, अगर आपका आपकी बाजार नजदीक है तो आपको
1: पैदल चलिए
0: या तो साइकिल का उपयोग कर सकते हैं,
1: उससे सेहत भी तो ठीक रहेगी ना, सेहत ठीक रहेगी अगर आप पैदल चलेंगे तो, इसका एक और फायदा ये
0: ठीक रहेगी और ईंधन भी बचेगा,
1: बिल्कुल बचेगा। आपने अपने विचार हमारे से साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चंडीगढ़,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं रामवीर बोल रहा जी, गांव फिरमत जिला कुरुक्षेत्र से जी।
1: कुरुक्षेत्र से जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी हां जी, जो आज का उद्देश्य है जी वो कार्यक्रम का तो वो बिल्कुल ठीक है जी, हमें ईंधन बचाना चाहिए जी।
1: जी
2: क्योंकि बचे हुए जो हम ईंधन की बचत करेंगे तो उसमें हमारा जो पैसा भी बचेगा जी।
1: आप सही कह रहे हैं, पैसा तो बचेगा ही और जो आने वाली जनरेशन है ना, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी तो कुछ बचाकर जाना है ना, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है
2: जी। जैसे सौर ऊर्जा का विकल्प है जी, हम जैसे कुकर वगैरह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंधन बचा सकते हैं जी।
1: आपने ये बहुत अच्छी बात कही, ये तो घर के ईंधन की बात हो गई, आज हम बात कर रहे हैं कार पूल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी और ईंधन बचाने की भी बात हो ही रही है। तो आप हमें ये बताएं, आप अपने परिवार की अगर बात करें तो आपके घर में ऐसा होता है?
2: हम जी देखिए, जब हमें नजदीक जाना हो तो जैसे बाइक वगैरह है वो ना लेके जाओ जी, पैदल जाओ, हमारे भी ठीक रहेगा जी और फ्यूल की भी बचत हो जाएगी जी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर रास्ता बहुत लंबा नहीं है, बहुत दूर तक नहीं जाना है तो हमें बेशक पैदल ही जाना चाहिए, ये तो बड़ा सुगम सा तरीका है।
2: साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं जी,
1: बिल्कुल जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। देखिए भारत में साइकिल चलाने का बहुत प्रचलन था, है ना, प्रमुखता से ये चलाई जाती थी साइकिल, लेकिन धीरे धीरे धीरे उसका चलन कम होता गया जैसे हम बहुत ज्यादा आधुनिक होते गए। लेकिन साइकिल चलाना सबको पता ही है सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और अगर पास ही कहीं जाना है तो जरूरी नहीं आप कार निकालें या गाड़ी निकालें या कोई अन्य वाहन निकालें, तो इससे तो हम बहुत सारी जो ऊर्जा है, बहुत सारा ईंधन है, पेट्रोल है या फ्यूल है, उसका हम बचत कर सकते हैं।
2: बिल्कुल जी, अच्छी आदत बनाओ जी अपनी तो आदत अच्छी बन जाएगी जी।
1: जी जी, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। अगले कॉलर को हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक ब्रेक ले लेते हैं।

0: हेलो चंडीगढ़
1: सुनीता भगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते। और जो भी हमें नमस्ते कर रहे हैं, अपना नाम बताने के बाद रेडियो का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा कम कर दें या फिर रेडियो सेट अपने से थोड़ा दूर हटा कर रखें।
1: जी मैं कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल किया। कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ जी।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है आप ठीक हैं। तो ये बताएं कि ईंधन की बचत कैसे कर रहे हैं, कार टूर करते हैं या नहीं? जी जरूर।
1: मुसीबत की घड़ी में सबका हाथ

0: तभी होगा देश का विकास।
1: सही बात, बिल्कुल।
0: हम साथ मिलके सब काम इकट्ठे करेंगे तभी ईंधन बचेगा जी।
1: सही कहा आपने। और क्या
0: जाना है, स्कूटर पुलिंग कर लो, कार पुलिंग कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लो जी। ठीक है ना जी?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: बाकी बिजली की बचत जरूर करनी पड़ेगी जी। हमें बाहर से कोयला मंगाना पड़ता है जी। बिजली में थर्मल पावर प्लांट पे कोयला बहुत लगता है जी।
1: जी बिल्कुल आ रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए किसी भी तरह का ईंधन हो
0: जी,
1: किसी भी तरह की ऊर्जा हो, उसे बचाना इस समय
0: सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें जी। सोलर कुकर अवेलेबल है, सोलर कुकर ले आए, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, गैस बचेगी। पहले तैयारी कर लें जी गैस पे काम करने से, चीजों को रूम टेम्परेचर पे ले आए, सारी सब्जी वगैरह काट के दालें भिगो कर रखें, तभी गैस की बचत होगी जी।
1: आपने ये बड़ी काम की बातें कही हैं और हमारी जो गृहणियां हैं ना आजकल काफी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, यहाँ तक कि गांव की जो गृहणियां भी हैं अच्छे से इस बात को जानती हैं।
0: तो गाड़ी की रफ्तार जी 40 किलोमीटर पे चलाएं।
1: हाँ,
0: यातायात में ट्रैफिक जाम में फंसने से बचे, इसमें ट्रैफिक जाम में ईंधन बहुत लगता है जी।
1: देखिए ट्रैफिक जाम तभी लगता है जब
0: थोड़ा आगे पीछे चलने जी,
1: बहुत सारी गाड़ियां जब हम सड़क पे लेकर आ जाते हैं ना तो उसी सूरत में ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आराम तलब जो हम इतना हो गए हैं उससे हम थोड़ा सा पीछे आए अगर, और देश का सोचें इस समय।
0: बाकी घर के नजदीक से चीज ले लें जी, कोई थोड़ी सी चीनी लेनी है, कोई चाय पत्ती लेना, हम दूर चले जाते हैं तभी तो ईंधन लगता है जी।
1: हाँ जी, ये भी आपने बात सही कही।
0: जाके लेते हैं 26 हेक्टर मंडी में जरूरी जाना है, घर के नजदीक से ले, सब चीज का रेट सेम ही है।
1: जी जी बात आपने बिल्कुल सही
0: कही। मंडी की तरफ दौड़ते हैं, इसमें बहुत खर्चा होता है जी।
1: आपने बिल्कुल सही बात कही है, ये घूम फिर कर बात वहीं पर आ रही है कि जितने भी तरीके हैं ऊर्जा बचाने के, ईंधन बचाने के, उन्हें हमें अपनाना ही होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो दुनिया के साथ चल पाएंगे।
0: अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे बढ़िया जी। अपना अक्षय ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, अपना सोलर एनर्जी तो बहुत काम किया जी हमारे लिए।
1: जी जी,
0: इसको और हम जितना इंस्टॉल करवाने की घर में कोशिश करें हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी।
1: जोर आज हम इस बात पर दे रहे हैं कि कार जो है उसे पूल करें, मतलब कि अगर आप मोहल्ले में हैं और एक ही जगह पर, कई बार होता है ना कि दो चार पड़ोसी एक ही जगह पर जा रहे होते हैं।
0: जी जी, बाकी कार की, कार में टायर ट्यूब में हवा हो, कार की ट्यूनिंग अच्छी हो, एवरेज देरी हो, सेटिंग कराते रहे जी, सर्विस कराएं कार की, इससे ईंधन बहुत कम लगता है जी।
1: हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, ये अगर इसी तरह की समझदारी की बातें हम अपना लें तो फिर ये जो संकट की घड़ी है इस समय जिसमें से हम गुजर रहे हैं सब लोग, और सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया पर ही इस समय संकट है।
0: बढ़ गया जी, अकाल बढ़ गया।
1: जी जी, चलिए आपने अपनी कीमती सुझाव जो हैं वो हम तक पहुंचाए हैं, दूसरे जो हम आपके साथी श्रोता हैं उन तक पहुंचाए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इन बातों पर जरूर अमल करेंगे। आपने कॉल किया, आपका भी हर्ष। हेलो चंडीगढ़।
2: जी जी जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील धात्री गांव कंटी से आपका छोटा भाई पुष्करनाथ शर्मा बात कर रहा हूँ। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम।
1: पुष्कर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, खुशी हुई आपसे मिलकर। अब
2: जी बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात हुई है, तो मुझे बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। तो माता रानी आपको खुश रखे और आपको भी मेरे से ज्यादा खुशी आपको मिले, आप हमें इतना खुश करते हो, तो माता रानी आपको भी खुश रखे।
1: चलिए जी, ईश्वर का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद हमारे सभी श्रोताओं पर रहे, यही हमारी दुआ है। चलिए अब बात करते हैं, अपने विषय पर वापस आते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ईंधन बचाना चाहिए, और गाड़ियां जो हैं बहुत सारी हम सड़क पे ना लेके आए, एक ही जगह पे जाना है तो गाड़ी हम शेयर कर ली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: जी जी, मैं यही कहना चाहूंगा सभी श्रोताओं से कि हम एक तो हम इनको बचाने के लिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम जहाँ हमें जरूरत ना हो वहाँ हम गाड़ी लेकर ना जाए, हम पैदल जाए। अगर हम पैदल जाएंगे तो हम अपने आप को भी फिट रख सकते हैं और अपने वो इंजन में बचा सकते हैं।
1: जी पुष्कर भाई।

0: आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा करने से ही हम अपनी मदद तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम देश की मदद भी करेंगे। और कहते भी है ना कि देश पहले है।
1: ये नहीं होता है कि हम देश सेवा कैसे करें। देश सेवा हम किसी प्रकार भी कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, ये जो भी कुछ चीज है
0: जी,
1: तो ये देश सेवा ही है।
0: ये बहुत बड़ी बात आपने कही। देखिए, देश सेवा सिर्फ वही नहीं होती, जैसे हमारे सैनिक भाई मुस्तैद होकर डटे रहते हैं सीमाओं पर, उनसे बड़ी देश सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन पर अमल करके अगर हम देश का नुकसान होने से बचाते हैं, तो इसको भी देश सेवा ही कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दीदी जी।
0: और ये बात भी आपने सही कही कि हम मिलकर, सब लोग मिलजुल कर जब कोई कदम उठाएंगे ना, हाथ बढ़ाएंगे, तो ही हम इस मुसीबत से बच सकेंगे, और तो ही हम ऊर्जा भी बचा सकेंगे, ईंधन भी बचा सकेंगे, और आने वाले समय में जो इस संकट से और ज्यादा जो परिस्थितियां उभर सकती हैं, जो नुकसानदेह हो सकती हैं, उससे हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी जी।
0: चलिए, आपने हमें इतनी दूर से टेलीफोन किया, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको मेरा नमस्कार और प्रणाम, और बहुत बहुत भगवान आपको सुखी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका। अच्छा जी, इस समय चल रहा है प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से FM 107.2 MHz पर। आगे बढ़ते हैं, एक गीत सुनवाते हैं आपको पहले।

जी बिल्कुल, देखिए ना, जब मिलजुल कर हम एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और फिर हम उस काम को करते हैं ना, तो फिर सफलता जो है उसे हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस समय ईंधन को बचाना है, ऊर्जा को बचाना है, और जहाँ तक हो सके इस बात को समझना है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय संकट है, ना सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में। तो हमें कुछ बातों को अपना कर इस संकट को दूर भगाना है, और उन बातों में शामिल है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पूल को अपनाएं। कार पूल यानी मतलब इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाड़ी में सफ़र करना मिलजुल कर, कुछ लोग एक गाड़ी में सफ़र करें, तो आज के समय की ये एक समझदार भरी बात हो सकती है। देखिए, ये पर्यावरण के लिए अच्छा तो है ही, यानी धुआं कम होगा, गाड़ियां कम निकलेंगी सड़क पर तो धुआं कम होगा और प्रदूषण तो कम होगा ही, और सबसे बड़ी बात ऊर्जा जो है वो हम बचा सकते हैं। अगली कॉल हम लेते हैं, उससे पहले ये एक संदेश आपके लिए।

0: पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर।
2: जी, विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं समय प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज का विषय है ईंधन बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल अपनाएं। अब ले लेते हैं इस प्रोग्राम की अगली टेलीफोन कॉल। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार मैम,
2: नाम बताएं अपना।
3: मैं ओमपाल भारद्वाज बोल रहा हूँ अम्बाला सिटी से।
2: अच्छा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू मैम।
2: क्या हाल है अम्बाला के?
3: अम्बाला बहुत बढ़िया मैम, थोड़ा सा बस गर्मी भी है थोड़ी सी अभी, मतलब इतना वो तो है नहीं, पर बाकी हाँ गर्मी जरूर है।
2: जी जी, गर्मी तो है और ये जो हम गाड़ियाँ बेहिसाब सड़क पर दौड़ाते हैं ना, उससे गर्मी बढ़ती है क्योंकि धुआं ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है।
3: उससे तो मैम बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है और गाड़ियों को जितना कम से कम हो सके चलाए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि भी जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां है ना, ज्यादातर उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनसे एक तो प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण है ही नहीं उनमें।
2: जी जी,
3: और
2: ईंधन की बचत होती है,
3: डीजल की बचत है, पेट्रोल की बचत है, इधर सीएनजी की भी बचत है वैसे तो अगर सही उसमें चले तो।
2: और सबसे बड़ी बचत तो पैसों की भी होती है ना।
3: और सबसे बड़ी बचत आपकी जेब की भी बचत है,
2: खर्च कम होता है।
3: बहुत फर्क पड़ता है जिससे।
2: और भाई अगर सड़क पर गाड़ियां कम चलेंगी ना तो हम सबके हित में है। देखिए क्योंकि जब गाड़ियों की संख्या कम होती है तो ट्रैफिक में जो जाम लगते हैं, ट्रैफिक सिस्टम बिगड़ जाता है, समस्या हो जाती है, उससे भी हमें ही फायदा होगा ना।
3: हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा जी। इससे तो यही फायदा इतना है कि आप कहीं भी मतलब आप उसको बीमारी बीमारी नहीं फैलेंगी, प्रदूषण जो होनी है धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी।
2: बिल्कुल। और इस समय जो संकट चल रहा है ऊर्जा का, हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही है। और अगर आपने आज के समाचार सुने हो सुबह, तो ये बहुत बड़ी सुर्खी थी आज समाचार पत्रों में कि पूरे दुनिया में लगभग 40 देशों में इस समय बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं।
3: बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं मैम, डेली सुन रहे हम तो। परसों भी हमने प्रधानमंत्री जी का वो सुना था, क्या कहते हैं संदेश, एक दो दिन पहले भी आया था, अब भी रोज डेली बता रहे हैं टीवी के ऊपर।
2: और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगता है पहले ही भांप ली सारी स्थिति, और आज ये खबर आई कि पूरी दुनिया में अब वर्क फ्रॉम होम होगा और ईंधन बचेगा और गाड़ियां नहीं चलेंगी और सरकारी वाहन नहीं चलेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो 3 दिन पहले ही हमसे ये कहा कि अब हमें इसके बारे में सोचना होगा।
3: हाँ बिल्कुल सोचना होगा जी, मैं तो कहता हूँ कि उनकी बातों पे अमल करना चाहिए और जो बात कहते हैं सटीक बात कहते हैं हमेशा से, पहले भी जब भी कोई ऐसी बात हुई है तो सत्य हुई है।
2: जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अपनी बात साझा की, हम तक पहुंचाई, फोन करने के लिए आपका बेहद धन्यवाद।
3: थैंक यू मैम।
2: हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
2: जी,
4: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
4: रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैडम, गोराया डिस्ट्रिक्ट जिलंधर से।
2: अच्छा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू मैडम।
2: अच्छा आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, हमें कारपूल करनी चाहिए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए?
4: बिल्कुल करना चाहिए जी, सबको करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर छोटे इंसान से बड़े इंसान तक कोई भी है, चाहे कोई नेता भी है, उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो कम से कम यहाँ पे तेल की बचत हो सकती है वो करें। तो ये नहीं है कि एक आदमी करेगा, ये सभी को मिलकर जो हमला है वो मानना पड़ेगा, एक करने की बात नहीं है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: तो मतलब जो संकट है वो तो गंभीर है, सबको पता ही है।
2: जी बिल्कुल गंभीर है, और इससे भी गंभीर बात ये है कि ये भी मालूम नहीं कि संकट कब तक रहेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और हम अपने भंडारे, हम अपना भंडार जो है, चाहे गैस का हो, चाहे ईंधन का हो, तेल का हो, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि थम जाएगा, सब थम जाएगा ना फिर। तो
4: बचत यही है कि हम आज से ही उसको जो बचा के रखेंगे
2: जी,
4: तो भविष्य में वो हमारे काम आएगा।
2: जी जी जी,
4: तो ये

0: जो है सबको मिलजुल के मतलब कोशिश करनी चाहिए
1: जी, अगर
0: ट्रांसपोर्ट है जो उसकी ज्यादा से ज्यादा बरतो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो देखो कितना बचत होता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: एक तरफ रख दो।
1: हाँ जी बिल्कुल, समझ
0: पैदल गुजारा होता है वहाँ पैदल चलिए।
1: जी जी जी,
0: यहाँ पे साइकिल पे भी जा सकते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं, साइकिल पे भी चले जाओ।
1: जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आज अगर हम जरूरत नहीं होने पर भी गाड़ी निकाल रहे हैं और जरूरत नहीं होने पर भी पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, बेतहाशा हम पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कल को जब ये संकट बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा, समस्या बहुत बढ़ जाएगी, तब आप गाड़ी कैसे चलाएंगे।
0: तो यही है ना, लॉकडाउन वाला काम हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, लगाना भी नहीं पड़ेगा फिर तो।
1: जी जी जी,
0: बिल्कुल सही। बेहतर यही है कि आप आज से ही सब इंसानों को मतलब देशभक्ति जिसके अंदर है,
1: बिल्कुल कहते हैं ना नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट इसीलिए कहा गया है ना, देश का पहले
0: देशभक्ति का आप परिचय दें और सब आज से शुरू करें कि जहाँ भी कम से कम मतलब ये सोचे कि हमने पेट्रोल डीजल जो भी कुदरती साधन है कोई भी है, चाहे कोई गैस है कोई भी है, उसको बचाना चाहिए जितनी भी हो सकती है।
1: जी, बड़ी सुंदर बात आपने कही, बड़ी सुंदर बात आपने कही कि देशभक्ति का परिचय दें इस समय, सिर्फ कहने से देशभक्ति नहीं है, है ना। हम ये मान लें कि हम बहुत देशभक्त हैं, इस समय जिस चीज की जरूरत है वो अगर हम नहीं करेंगे ना तो फिर देशभक्त आप नहीं है सच्चे।
0: बिल्कुल, अगर हमने कहीं घूमने भी जाना है तो सब दोस्त तो मतलब इकट्ठे होकर
1: इकट्ठे जाइए,
0: सलाह बनाएं और इकट्ठे अच्छा, होकर जाएं।
1: ये भी है कि
0: अलग अलग गाड़ियां लेके जाएं कि मैं अपनी गाड़ी लाऊंगा वो अपनी लाएगा, ऐसा नहीं। एक गाड़ी में चार पांच दोस्त है ना, वो मिलकर कहीं भी घूमने जाना है तो चलो चले जाओ।
1: और सिर्फ दोस्त
0: ये है कि घूमने की मतलब परहेज करें आजकल, क्योंकि अगर शॉर्टेज है तो आप मतलब संयम रखें और जहाँ बहुत जरूरी है वहाँ जाना चाहिए।
1: एक गर्मियों में अगर आप बाहर नहीं भी गए कुछ दिनों के लिए तो कुछ हर्ज नहीं है, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, आप आगे भी जा सकते हैं। इस समय संकट है तो उसमें एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है, सरकार का साथ देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो आम इंसान से लेके बड़े नेता तक वो सबको मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी मतलब बचत हो सकती है वहाँ करिए,
1: बचत करिए,
0: तभी मतलब हम जो बचत होगी आगे हमारे काम आएगी।
1: जी धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमसे बात की। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
2: मैम, मैं सूरज बात कर रहा हूँ, तहसील ठोक जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से।
1: अच्छा जी सूरज जी,
2: जी
1: आप तो बड़ा चमक रहे हैं आजकल हिमाचल में तो इतना नहीं चमक रहा होगा, पहाड़ों के बीच में आप रहते हैं।
2: 25 से 30 के बीच टेम्परेचर हमारा यहाँ,
1: लेकिन फिर भी ना मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में कुछ तो खुशनुमा होता है मौसम।
2: बिल्कुल मैम,
1: ठंडी हवाएं तो चलती हैं, खासकर शाम और रात तो बहुत अच्छी होती है,
2: बहुत ज्यादा।
1: अच्छा चलिए ठीक है, आप इतने अच्छे सुहाने मौसम में रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि वहां पर भी अब जैसे गर्मियां हैं, पहले भी हमारे एक श्रोता ने हिमाचल से हमें फोन किया, बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो वहां पर कुछ मुश्किल तो होती है, दिक्कत तो होती है।
2: दिक्कत होती है, एक्चुअली हम जो ठोगे ना
1: जी
2: वो जगह मैम ऐसी है, लाइक यहाँ से आप इधर आप कल्पार सांगला वगैरह के लिए भी जा सकते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: और हम ये जो कोटखाई जहाँ से हमारे राकेश जी ने कॉल किया इधर भी जा सकते हैं आप, कोटखाई हाटकोटी वगैरह के लिए।
1: सिसु से आगे कल्पा,
2: सिसु नहीं कल्पा पहले आता, सिसु बाद में आता,
1: सिसु बाद में आता। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा तो आप मुझे ये बताएं, आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई वाहन है आपके घर में?
2: बिल्कुल चलाते हैं।
1: अच्छा तो जितने सदस्य हैं घर में सबके पास गाड़ी है?
2: नहीं गाड़ी तो एक ही है।
1: एक ही है ना?
2: हाँ जी।
1: तो मतलब आप तो वैसे ही पहले से ही बचत कर रहे हैं।
2: हाँ जी एक्चुअली पता क्या मैम, हम पता एक्चुअली क्या करते हैं, मैं गाड़ी में बहुत प्रेयर चलाता हूँ, वैसे चलाता चलाता ना कम चलाता हूँ, तो जैसे कहीं भी जाना ना मैं बस में जाता हूँ हमेशा।
1: बहुत अच्छा करते हैं, कहीं भी जाना हो आप बस का इस्तेमाल करते हैं, इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती।
2: मेरे को घर में इस चक्कर में ताने सुनने पड़ते, बोले क्या बोलते तेरे को, तेरा ड्राइविंग पे हाथ छूट गया, क्या बोलते तेरे को ड्राइविंग, फिर तेरा हाईवे पर गाड़ी कैसे चलानी, तो
1: कोई बात नहीं आप सुन लीजिए ताने।
2: हाँ जी
1: आप ताने सुन लीजिए, लेकिन देश हित की बात सोचनी हमें इस समय, है ना।
2: हाँ जी
1: अपना हित भी है, देश का हित भी है, जितना ईंधन बचेगा, जितनी हम ऊर्जा बचा लेंगे उतना ही इस समय अच्छा है। देखिए ना सरकार के पास भी हर चीज एक सीमित मात्रा में रहती है, है ना, और जब कहते हैं ना कि जरूरत बहुत ज्यादा हो तो वो जो मात्रा होती है उसको तुरंत तो हम खत्म नहीं कर सकते,
2: नहीं कर सकते,
1: कुछ ना कुछ तो अपने पास रखना है ना, अपने हाथ में रखना है।
2: आज की स्थिति ये होगी ना, जैसे हमारा सेब का बगीचा है तो मैम हमारे घर से थोड़ा सा आगे, अब देखो मैम लोगों को इतना आलस लग गया कि

0: सड़क की बगीचे तक निकाल दिए, बोलो गाड़ी बगीचे तक जा रही है
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अधिक चिंता की बात तो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं घर के, युवा लोग जो हैं, उन्हें इस बात पर जरा भी जागरूक नहीं किया जा रहा।
0: और मैम आज की डेट में ये टाइम पता क्या आ गया, जैसे हम जब छोटे छोटे थे ना, हमने मैम क्या बोलते हैं घर से लेके लाइक जैसे हमारे अच्छा लगा मेन स्टेशन है कोटखाई वाले रीजन में ना, तो हम घर से लेके छाला तक कोई 15-20 किलोमीटर साथ में तीन तीन चार चार
1: चलते थे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहला जमाना पहला दौर बहुत अच्छा था, लोग पैदल चलते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे यही बातें करते हैं, हमें यही बताया है उन्होंने, पहले लोग गाड़ियों का सफर इतना नहीं करते थे और देखिए कितना लंबा जीते थे वो लोग, सेहत कितनी अच्छी रहती थी।
0: और आज की डेट में मैम क्या हो गया है, जैसे मान लो मेरे गांव में कुछ लोग है, अब जैसे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है ना
1: जी, तो गाड़ी ही चाहिए,
0: कोई खुद आदमी खुद ऑफिस वाला है बंदा, बच्चों को भी गाड़ी में ले, मतलब
1: कुल मिला के आपका संदेश भी यही है, आप भी यही कहना चाहते हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, पैदल चलिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए।

0: सेहत कितनी अच्छी रहती थी।
1: और आज की डेट में मैम क्या हो गया है, जैसे मान लो मेरे गांव में कुछ लोग हैं, अब जैसे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है ना
0: जी, तो गाड़ी ही चाहिए,
1: कोई खुद आदमी खुद ऑफिस वाला है बंदा, बच्चों को भी गाड़ी में ले, मतलब
0: तो कुल मिला के आपका संदेश भी यही है, आप भी यही कहना चाहते हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, पैदल चलिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए।
1: बहुत ज्यादा
0: चलिए आपने हमें
1: मैं तो भी
0: फोन
1: किया। बस में ट्रेवल कर, अगर मैं कभी गाड़ी ना मिले मेरे को तो मजा आता बस में ट्रेवल करने
0: जी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका,
1: थैंक यू।
0: हेलो चंडीगढ़ जी, हाँ जी, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, अभी भी हमें सुनाई दे रहा है जी। आप रेडियो या तो बंद कर दीजिए, अपने से दूर कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए
2: जी। मैम
0: जी, नाम बताएं अपना
2: जी। मैम एक मिनट जी,
0: जी नाम बताएं अपना। हेलो हेलो,
2: हाँ जी हेलो मैम
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: आवाज नहीं आ रही मैम।
0: हेलो हेलो जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए लगता है इन श्रोताओं तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, हम अगला कॉल लेते हैं। हेलो चंडीगढ़,
3: सुनीता भगत जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और नाम भी बताएं अपना।
3: सप्पा सिंह बिंद्रा, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से।
0: अच्छा जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: मैडम आज का जो विषय है
0: जी जी,
3: जो देश पर समय कठिन परिस्थिति से देश हमारा गुजर रहा है, ये युद्ध की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है
0: जी, बिल्कुल।
3: जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1.5 से 2 महीने के लिए ही हमारे पास स्टॉक है, उसके बाद अनिश्चितता का माहौल है
0: जी। इसी बात को गंभीरता से हमें लेना है कि 1.5 से 2 महीने तक का ही स्टॉक है
3: जी, तो इसपे हमें ये सोचने की जरूरत है कि इन चीजों का हम कम से कम इस्तेमाल करें और तभी इनकी बचत की जा सकती है
0: जी जी जी।
3: मेरे एक मित्र है स्वीडन में, वो कहते हैं कि वहाँ कार तो किसी किसी के पास और बहुत कम लोग चलाते हैं, लोग पैदल चलना, साइकिल पे चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना ही पसंद करते हैं
0: जी, बिल्कुल।
3: एक तो हाँ इस वजह से प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और ईंधन की तो बचत होती ही है। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं
0: जी,
3: उसके लिए हमें डॉलर की आवश्यकता होती है, इंटरनेशनल करेंसी की आवश्यकता होती है जिससे व्यापार किया जाता है
0: जी जी बिल्कुल।
3: तो जिसकी हमें उपलब्धता हमारे देश में कम है, हम दूसरों के ऊपर आश्रित हैं
0: जी,
3: उन चीजों का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बचत करनी चाहिए।
0: और आपका भी संदेश यही होगा सबके लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें।
3: पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऐसी बात है मैडम कि कुछ गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल देना चाहूंगा
0: जी
3: कि रूट कुछ लंबे तय कर दिए जाते हैं, जो आधे घंटे का रास्ता है उस पे 1 घंटा लग जाता है।
0: देखिए ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमें इस बात पे जागरूक होना है कि हम जितना हो सके अपने निजी वाहन जो हैं वो सड़क पे ना उतारें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें ऊर्जा बचानी है, पेट्रोल बचाना है।
3: मैडम बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमें निजी तौर पे तो बचत करनी है, कार पूलिंग करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना है
0: जी जी,
3: पैदल चलना है, साइकिल पे चलना है, ये बातें तो करनी है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, थोड़ा लोगों के जरूरत के मुताबिक और टाइम को मैनेज करते हुए चलाया जाए तो लोग
0: जी, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, ये बातें आप उस डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकते हैं। हम जो

कर सकते हैं, मतलब आकाशवाणी जो कर सकती है वो यही कर सकती है कि इस विषय पर अपनी लिसनर्स जो हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको हम जागरूक कर सकते हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया जी। आप इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार, माफ कीजिएगा, प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। अगली कॉल हम लेते हैं, उससे पहले ये एक गीत सुन लेते हैं।

0: के वो बोली नाम से है काम क्या, आई थी वो धम से, आई थी वो धम से गई छम छम छम। मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम,
0: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जी तो मोटर चलाते समय, वाहन चलाते समय हल्ला गुल्ला आपने बिल्कुल नहीं करना है और मस्ती बिल्कुल नहीं करनी है जिस तरह से ये कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि यातायात के जो नियम हैं उन्हें आप तोड़ते हैं और अपने लिए तो परेशानी होती ही है, दूसरों के लिए भी परेशानी हो जाती है। तो मोटर की बात आज हम कर रहे हैं, यानी कार की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हो सके उतना हम इस्तेमाल करें, कार पूल करें, यानी एक ही कार में अधिक लोग सफ़र करें अगर एक ही जगह पे जाना है, ताकि ऊर्जा बच सके, पेट्रोल बच सके, क्योंकि इस समय देश में और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ही इसका संकट है और हमें बचाव करना है। तो हमारे श्रोता इस विषय पर हमसे बात कर रहे हैं, ले लेते हैं अगली कॉल। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
2: जी।
3: हेलो नमस्कार जी, मैडम जी।
2: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
3: मैडम मैं अरविंद कुमार गांव राम शहर से बोल रहा हूँ जी।
2: अच्छा अरविंद जी,
3: प्रदेश से।
2: अच्छा जी अरविंद जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया मैडम जी, आप सुनाइए।
2: जी बिल्कुल ठीक हैं। और बताएं आपके शहर के क्या हालचाल हैं, क्या बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं वहाँ पे?
3: हाँ मैडम, गाड़ियां चल रही हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि थोड़ा ईंधन की बचत करें,
2: तो आपको लगता है लोग सुन रहे हैं इस बात को? आपको लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को?
3: मैडम को जो जानकार है, देश जो अपने देश के हित में है वो तो कम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं मानते वो चला रहे हैं गाड़ियां।

0: जी, और जो नहीं मान रहे हैं या नहीं मानते हैं, बहुत जल्दी उनको ही इस संकट में से गुजरना पड़ेगा जब
1: हाँ
0: तेल के
1: बिल्कुल मैडम,
0: भंडार
1: समझना
0: खत्म हो
1: चाहिए।
0: जाएंगे।
1: जैसे आर्थिक संकट आया हुआ, अब ईरान और उधर युद्ध चला हुआ, उसके मद्देनजर थोड़ा ईंधन की बचत करनी चाहिए जी।
0: थोड़ा नहीं,
1: जी
0: बहुत
1: हाँ
0: ज्यादा हमें
1: बिल्कुल
0: ईंधन की बचत करनी है, ऊर्जा को बचाना है, क्योंकि बार बार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि भंडार जो है वो है अभी, लेकिन वो खत्म भी हो सकता है।
1: खत्म भी हो सकता
0: और
1: है।
0: हम अगर बचाकर चलेंगे, अपना ऊर्जा हम बचा के चलेंगे, तो बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। वरना तो
1: हाँ जी, अपने
0: सारी
1: बच्चों के लिए भी
0: गाड़ियां,
1: और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सोच
0: जी
1: सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: मैडम।
0: वरना तो सारे वाहन बस घर पे ही खड़े रहेंगे ना, हर जगह पे खड़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चल पाएगा।
1: जी
0: और ऐसा भी देखने में आता है कि जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम वाहन निकाल लेते हैं,
1: जी
0: है ना? तो यही बार
1: जी
0: बार हम कह रहे हैं, और आपका भी यही मानना होगा कि जरूरत
1: जी
0: है तभी
1: हमारा भी
0: हम
1: यही
0: बाहर
1: मानना है
0: जाएंगे।
1: कि जैसे हमारा भारत वर्ष है, कच्चे तेल पे भी और पेट्रोलियम पे भी दूसरे देशों पे निर्भर करता है, उसको
0: जी
1: मद्देनजर रखते हुए हमें ईंधन को कम से कम यूज करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात हम तक पहुंची, हमारे श्रोताओं तक पहुंची है, बहुत धन्यवाद आपका। हेलो चंडीगढ़,
2: मैडम नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बात कर रहे हैं
2: मैडम,
0: आप?
2: मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी।
0: जी नागेंद्र जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं मैडम जी, बहुत बढ़िया मौसम है। कल परसों जो बारिश हुई है उससे नए सिरे से ठंडक महसूस हो रही है जी।
0: चलिए अच्छा है, आप ठंडे मौसम में बैठे हुए हैं, तो क्या सोचना है आपका हमारे आज के विषय पर?
2: मैडम एक बार फिर भी से अगर रिपीट कर देते।
0: जी जरूर कर देते हैं, वो सब श्रोता जो शायद अभी भी जुड़े हों हमसे, प्रोग्राम पहले से नहीं सुन पा रहे हों, तो उनके लिए भी बता देते हैं। आज का विषय है हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में, ईंधन बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल अपनाएं।
2: जी मैडम
0: जी
2: बहुत
0: समझे
2: अच्छा
0: आप?
2: विषय है मैडम जी, और प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि देश के लिए इस वक्त ईंधन को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। और ईंधन का इस्तेमाल जो है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है वहीं पर इस्तेमाल करें। विशेष तौर पर ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मैं समझता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो जो हमारे टूरिस्ट भाई यहाँ पर आते हैं वो अपनी गाड़ियां जो है वो बॉर्डर पे ही छोड़ के आए, और हमारे जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है, HRTC है, दूसरे तरह के वाहन हैं, टैक्सियां हैं,
0: जी
2: क्योंकि मैडम जी एक तरफ तो उससे ईंधन बचेगा, दूसरी तरफ जो है वो उनकी
0: पर्यावरण की रक्षा भी होगी,
2: पर्यावरण की
0: नहीं
2: रक्षा
0: होगा।
2: भी होगी, और उनकी अब व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी वो लाजमी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उनको गाड़ी चलाने का इतना तजर्बा नहीं होता है जिसकी वजह से जो है अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और ये जो हमारे जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको भी हम बताएंगे,
0: जी
2: क्योंकि
0: जी
2: इस वक्त जागने का वक्त है,
0: जी
2: वक्त
0: बिल्कुल,
2: जागो वरना कोई नहीं बचेगा।
0: आप
2: मैं
0: सही
2: जी
0: कह रहे हैं, इस तरह से
2: क्योंकि
0: पहाड़ों की खूबसूरती भी बनी रहेगी और जो ऊर्जा है वो भी बचेगी, कितना पेट्रोल बच जाएगा अगर सारी गाड़ियां पीछे ही खड़ी हो जाएं, और फिर आप जब वहां पहुंचते हैं तो वहीं की गाड़ियों का इस्तेमाल करें। बड़ी अच्छी बात
2: जी,
0: कही आपने,
2: ऊर्जा का बचत तो होती है, लेकिन जो हमारा जैसे ध्वनि प्रदूषण है, हमारा कार्बन उत्सर्जन है, ट्रैफिक जाम है, वो भी घटता है। ऊर्जा की बचत होने के साथ साथ जो शोर होता है, जो हमारे जो टिकाऊ यात्रा और जो प्रकृति का जो नजारे देखने का मौका
0: जी,
2: मिलता
0: जी,
2: है
0: जी,
2: उसको
0: जी,
2: भी इंजॉय कर सकते हैं।
0: सही कहा
2: तो कुल
0: आपने।
2: मिलाकर के मैं निष्कर्ष ये है कि इससे ऊर्जा भी बचाइए, शोर घटाइए, टिकाऊ यात्रा कीजिए, अपने पैसे बचाइए, और इलेक्ट्रिक और जो हाइब्रिड जो मॉडल है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम अच्छा पहाड़ों पे मैडम जी LPG की इसलिए ज्यादा समस्या नहीं हमें आ रही है क्योंकि हमारे जंगलों में लकड़ी है, हमारे जो LPG की वजह से जो पेड़ों की कटाई छंटाई जो लोगों ने बंद कर दी है उसको दोबारा से शुरू कर दिया है। तो इस तरह से जो पहाड़ों पे जो हमारे जो ईंधन का जो बचाने का जो तरीका है वो लोग नए नए पुराने तरीकों को अपना रहे हैं अब जी, और अगली पीढ़ियों के लिए भी शुद्ध जलवायु और स्वच्छ जीवन और उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके लिए हम कामना कर सकते हैं। हम सारे का सारा ईंधन जो है बाहर से खरीदते हैं, और हमारा कितना ही पैसा जो है विकास में लग सकता है अगर हम ये पर्यावरण मित्रता को पुष्ट करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, यही ईंधन जो हम बचाएंगे इससे पैसा बचाएंगे और अपने देश में ही विकास होगा। आपने हमें फोन किया, धन्यवाद।
2: और मैं सरकार से भी एक गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है हमारे यहाँ पर, अगर आप हमें डायनमो जो अगर दे दें तो हम हरेक घाट में जो हमारे यहाँ पर आटा पीसने के लिए जो चक्कियां चलती है ना पानी से

0: जी
1: उसमें वो डायनमो लगा करके लोगों के घरों तक जो है वो हम बिजली अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं, सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि ये गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। जी
0: जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने फोन किया और हमसे बात की, अपने विचार साझा किए। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो,
2: गुड मॉर्निंग
0: जी। गुड मॉर्निंग, नाम बताएं अपना।
2: मैं किरण बात कर रही हूँ।
0: फिर से नाम बताएं।
2: किरण।
0: किरण जी, किरण कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: मैं तस्वीर से बोल रही हूँ।
0: हेलो जी किरण, आपकी आवाज बहुत कम पहुंच रही है हम तक।
2: मैम कुफरी से बोल रही हूँ।
0: कुफरी से बोल रही हैं? अच्छा जी, आप तो बहुत ऊंचे क्षेत्र से बोल रही हैं तभी शायद आपकी आवाज हम तक पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कुफरी तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा जी, तो आप सुन रही हैं ये प्रोग्राम?
2: जी बिल्कुल मैम।
0: और टॉपिक के बारे में भी आपको पता ही है?
2: जी मैम।
0: अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे?
2: मैम मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरे पास अपनी मतलब तीन तीन गाड़ियां हैं तो मैम मैं अपनी एक ही गाड़ी यूज की है।
0: जी अच्छा करती हैं आप, एक ही गाड़ी इस्तेमाल करती हैं, और आपने कहा कि आपके पास तीन तीन गाड़ियां हैं, तो हम ये भी कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि भाई जितनी ज़रूरत है उतनी ही गाड़ी खरीदें। अब ज़रूरी नहीं है कि सदस्य अगर पांच है तो पांच ही गाड़ियां आपके घर में होनी चाहिए, कोशिश कीजिए एक ही गाड़ी से काम चले।
2: जी जी, गाड़ी भी नहीं।
0: अच्छा, तो आप पूरा ध्यान रखती हैं कि गाड़ी फालतू आप घर से बाहर ना लेके जाएं?
2: बल्कि कोई गांव पुलिस से भी मांगे तब भी मैं उनको नहीं देती।
0: अच्छा जी
2: जी मैम।
0: चलिए ये तो आप अच्छा करती हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी को सच में जरूरत भी हो सकती है तो दे दिया कीजिए कभी कभी। जी जी जी,
2: तो
0: चलिए अच्छा किरण जी, आपने समय निकाला हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो चंडीगढ़।
0: जी जी,
3: आदाब नमस्ते।
0: आदाब नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
3: पंचकुला आर्ट सेक्टर मार्केट से फजलू खान।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैम ऐसा है कि देखो, बचाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी हमारी जरूरतों की चीजें हैं।
0: जी बिल्कुल,
3: जितनी भी हमारी जरूरतों की चीजें वो सारी हमारे बचाने के लिए होती
0: है। प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे पास प्रकृति ने दिए हैं उनको तो बचाना ही है,
3: जरूरी बचाना चाहिए। देखो पेट्रोल भी है, हमारा खाना भी है, हमारा पानी भी है, बिजली भी है।
0: जी जी जी।
3: और राशन के लिए हम अपने में अगर कहूंगा किसी भी चीज के पीछे थोड़ा सा अगर पैदल चले तो कितना मजा आता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं,
3: उसमें हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। साइकिल चलाते हैं तो कितना अच्छा मजा आता है, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है।
0: बिल्कुल,
3: हर एक चीज को हमारे को अपने आप को सोच समझ के चलना चाहिए।
0: बस यही बातें हम कर रहे हैं।
3: समझे कौन,
0: जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी आपने कहा समझे कौन, तो अब वो वक्त आ गया है कि समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। देखिए गति जो है, जैसे समय चलता रहता है तो ऐसे ही दुनिया को भी तो चलना है ना,
3: जरूरी है।
0: तो देश को भी चलना है, देश तभी चलेगा जब हमारे पास ऊर्जा होगी, जब हमारे पास ईंधन होगा। ठीक है ना, तो हम बैठ तो नहीं सकते एक जगह पर, तो समझना पड़ेगा। अच्छी बात आपने कही,
3: हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए सोच समझ के चलना चाहिए।
0: जी जी, आपने बिल्कुल सही,
3: कोई चीज वेस्ट ना करें बस।
0: जी कुछ भी वेस्ट ना करें, बहुत अच्छी बात आपने कही। फोन करने के लिए धन्यवाद,
3: मेहरबानी।

0: जी, तो अपने वाहन से हमें ऐसे ही प्यार होता है, कई बार तो हम उनके नाम भी रख लेते हैं और यूं लगता है कि जैसे रब ने जोड़ी बना दी है। लेकिन आप ज़रूर प्यार कीजिए अपने वाहन से, निकलिए बाहर। लेकिन बार बार हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो आप अपना वाहन घर से बाहर ना निकालें। अच्छा, समय हमारे पास काफ़ी कम है तो एक दो कॉल हम और ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी, जी नाम बताएं अपना।
1: मैं वीरसेन वशिष कैंट।
0: जी जी वीरसेन जी, जी वीरसेन जी बताएं क्या कहना चाहेंगे आप।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, ईंधन जो इस समय बाहर से जो भी चीजें आ रही उनको हमें कम यूज करना चाहिए।
0: जी जी,
1: और ईंधन की तो बचत जरूरी है, नहीं तो 60 दिन के बाद सब कुछ ठप हो जाएगा देश में, तो इसलिए ईंधन की बचत बहुत जरूरी है और हमें सार्वजनिक वाहनों की का प्रयोग करना चाहिए ज्यादातर।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और आदत ये बन गई कि घर के पास ही दुकान है वहाँ भी मोटरसाइकिल या स्कूटर बजाने लग गए, पैदल एक पैर नहीं धरते।
0: जी हाँ,
1: तो और कम से कम संकट की घड़ी में तो
0: सोचना चाहिए इन बातों की तरफ।
1: तो अपने भी इसमें हमें ईंधन की ऊर्जा की बचत का हर प्रकार की ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो।
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बुरी बात तो ये है कि हम अपने घर के बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं ये बात।
1: बच्चों को भी बताएं,
0: पास पड़ोस में ही जाना हो तो मोटरसाइकिल निकाल लिया या कार निकाल ली, पास में ही जाना हो तो वो अच्छी बात
1: है। जाना चाहिए।
0: जी जी सही कहा आपने। ठीक है जी, आपने बात साझा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है।
0: हेलो चंडीगढ़। जी जी नमस्ते जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर।
2: कहना चाहता हूँ कि तो आपने बहुत बहुत अच्छी बातें समझाई हमें।
0: जी जी।
2: दूसरा ये है कि हमें खुद को पैदल चलना चाहिए, पैदल। मैं तो खुद पैदल चलता हूँ।
0: जी अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। पैदल चलने जैसी और कोई अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती।
2: सबसे बड़ी बात ये है कि पैदल क्या होता है,
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और
2: सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें इधर उधर का रास्ता पता चलता है, रास्ता।
0: जी जी जी जी चलिए अच्छा है।
2: और आपने और मैं ये दफ्तरों दफ्तरों की बस हम ना सभी गाड़ी क्या करते हैं अपनी अपनी गाड़ी यहाँ चंडीगढ़ में सभी गाड़ी हर गेट के अंदर चार चार पांच पांच गाड़ी खड़ी हुई।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं।
2: तो हमें जरूरत क्या लेने की जरूरत नहीं हमें।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, जरूरत जितनी है हमें उतनी ही हम गाड़ी बाहर निकालें। और अगर एक ही जगह पर कुछ दो चार लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो हर कोई अपनी गाड़ी ना निकाले।
2: और हमने घर से किक मार के ना गाड़ी टू व्हीलर बाहर घर से पहले हम सड़क से बाहर निकाल देते हैं उसको।
0: जी बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही आपने। आपने हमें फोन किया, आपका

0: बेहद धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हमारा आज का विषय था ईंधन बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल अपनाएं। और इस विषय पर दिल खोलकर हमारे साथ हमारे श्रोताओं ने बातें की हैं, अपने विचार साझा किए हैं। यकीन मानिए, हमें बहुत अच्छा लगा। और इससे भी ज़्यादा अच्छा हमें ये लगेगा कि जितने भी विचार यहाँ पे साझा हुए हैं, जितनी भी बातें आपस में हुई हैं, उन पर हम सब अमल करें और संकट की इस घड़ी में इकट्ठे खड़े होकर हम इस संकट का मुकाबला करें। अब प्रोग्राम का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।
0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम आप सुन रहे थे विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से। इस समय श्रोताओ 11 बजे हैं। आइए अब सुन लेते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
3: श्रोताओ नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आज की कहानी का शीर्षक है दहेज। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय बहुत ही गंभीर है और कहीं ना कहीं हमारे दिल में गहरा असर डाल सकती है। जी हाँ, दहेज। दहेज समाज में एक सामाजिक अपराध है जो महिलाओं पर कल्पना से परे प्रताड़नाओं तथा अपराधों का कारण है। इस अपराध ने समाज के सभी तबकों की महिलाओं की जान ली है, चाहे वे गरीब हो, मध्यम वर्ग की हो या धनाढ्य हो। लेकिन आज के समय में सभी इस जाल में फंसते हैं एवं शिकार होते हैं, जिसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव और लालच। जी हाँ श्रोताओं, मनुष्य में बढ़ता हुआ लालच। दहेज वर्तमान समय में इतनी बड़ी समस्या है कि इसके कारण कई बेटियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। शादी विवाह के बीच दहेज की चर्चाएं भी समाज में अक्सर सुनने में मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
4: माँ, आप इतने उदास क्यों बैठी हो?
5: बस थोड़ी सी चिंता है।
4: कैसी चिंता माँ?
5: वो रमा काकी से बात हुई थी आज, तो वो बता रही थी कि उनकी बेटी सुनीता की शादी हुई है। अब तो जो सुनीता के समधियों ने दहेज मांगा था, तो बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने किसी से उधार लेकर अपनी बेटी की शादी करवाई।
4: क्या, उधार लेकर?
5: हाँ बेटा, अब बेचारी बड़ी परेशान है। कमाई वैसे ही कम है भाई साहब की, ऊपर से ही कर्जा उतारने की टेंशन।
4: पर माँ, ये तो बहुत ही गलत बात है।
5: गलत तो है बेटा, पर ये समाज नहीं समझता। अगर वो दहेज नहीं देती तो उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं होती और ना ही समय से हो पाती।
4: सुनीता आंटी की बेटी खूब पढ़ी लिखी और समझदार है, इतनी प्यारी लड़की की शादी तो यूं ही हो जाती है, उन्हें दहेज देने की जरूरत कहाँ थी। आप तो जानती है ना माँ, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है। आंटी के पास इतना होता और वो अपनी खुशी से देती तो बात और थी, पर दबाव में और उधार लेकर दहेज देना अपराध है। आंटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया माँ।
5: बेटा, अपने बच्चों के आगे सही क्या और गलत क्या, बस अपने बच्चों की खुशी ही नजर आती है।
4: नहीं माँ, गलत तो गलत ही है ना, सब ऐसा करेंगे तो समाज में सुधार की शुरुआत कैसे होगी।
5: तू अभी नहीं समझती है, कुछ ही 100 में से कोई एक दो होंगे जो ये बात समझते होंगे, बाकी लोग जो समाज में है ना, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। समाज का जो चलन है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
4: तो क्या माँ, कल को कोई मेरी शादी के लिए भी दहेज मांगे तो आप दे दोगे?
5: बेटा, अब मुझे यही तो चिंता है, बेटी तेरे बाबूजी तो है नहीं, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, शादी में तो सब देना ही पड़ेगा ना।
4: आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपने ही कहा ना ये सब गलत है, फिर भी आपको करना है, समझ तो आप भी नहीं रही है। दहेज देना गलत है और इसमें मैं आपके साथ नहीं हूँ माँ। अगर ऐसी ही चिंता है आपको तो मुझे शादी ही नहीं करनी।
5: अरे तू पागल हो गई है क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा?
4: देखो माँ, गलत का साथ मैं नहीं दे सकती और ना ही मैं आपको ऐसी चिंता में देख सकती हूँ।

0: तो आप सारी चिंता खत्म।
1: नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। परसों तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम ऐसा कुछ मत करना बेटी, तुमको मेरी कसम है।
0: अरे माँ, मतलब आप चाहती हैं भले आपकी बेटी दुखी हो जाए पर उसकी शादी होनी ही चाहिए।
1: बेटा ऐसा तो नहीं चाहती मैं, बस मैंने इतना कहा है, तू परसों कुछ मत कहना, मैं देख लूंगी अपने आप।
0: ठीक है, अभी आप सो जाइए और चिंता मत कीजिए। ईश्वर, मैंने सुना है कि आप हो और मेरा ये विश्वास है कि आप हो और जीवित हो, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं आप। हे ईश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस दहेज प्रथा के विरोध में, जो समाज में डर है, सब चुप हैं, दहेज लेने वालों को कोई रोक ही नहीं रहा और आज ये मेरे जीवन में भी आन पड़ी है। माँ ने मुझे कसम दी है कि मैं कुछ ना कहूँ और आप जरूर कुछ कर सकते हैं। प्लीज मेरे इन हालातों में मेरी मदद करो, मुझे सही राह दिखाओ कि मैं सही निर्णय ले पाऊँ और जो भी परसों आ रहे हैं मुझे देखने वो समझ पाए और माँ को भी मैं समझा पाऊँ। प्लीज मेरी मदद करो, परमेश्वर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। बाकी तो संभाल लो खुद को सुमन, जो होगा अच्छा ही होगा परसों।
2: माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो, दहेज मांगना सही नहीं है, यह एक कानूनन अपराध है।
3: बेटा इतना बोलने की इजाजत मैंने नहीं दी है तुझको, तू शांत रह तो ही अच्छा होगा। सुबह से देख रही हूँ बोले जा रहा है, अगर वो अपनी बेटी की खुशी से कुछ देना चाहती है तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है।
2: माँ पहली बात तो उस लड़की के पिताजी नहीं है और दूसरा मैं आपको जानता हूँ, वो खुशी से दे या ना दे पर आप जरूर दबाव डालोगी उन पर।
3: बस अब चुप।
2: माँ हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी चाहिए ना, वो अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहे यही मेरे लिए काफी है।
3: जब समाज वाले पूछेंगे हमसे कि क्या मिला और मिला जी, बेटे की शादी तो करा दी, तो क्या कहेंगे हम कि हमें तो एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की जो हमारे बेटे के लिए अच्छी जीवन साथी है और हमारी अच्छी बहू है जो हमारा घर संभालेगी, ये कहेंगे क्या।
2: हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहना है।
3: चुप रहो तुम, हंसेंगे समाज वाले हम पर, अब हमें कुछ सुनना नहीं है, चुपचाप चलो और अपना मुंह बंद रखना।
2: मैं आपके इस फैसले से खुश नहीं हूँ, आप हमेशा ही सामान देखती हैं, कौन कितना दे रहा है, अगर दहेज ही चाहिए ना तो इतना पढ़ाया लिखाया क्यों। माँ मुझसे नहीं होगा ये जानते हुए कि दहेज लेना जुर्म है और मैं आपका साथ दूँ, आपको जो देखना है वो देखो, जो मुझे देखना होगा वो मैं देख लूंगा।
3: बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही होगा।
1: अरे उर्मिला जी।
4: हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते
1: जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कैसी हैं आप।
4: हम तो बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
1: को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना।
4: नहीं नहीं दिक्कत कैसी, बस कार में बैठे और पहुँच गए।
1: सुमन जरा पानी लाना बेटा।
5: नमस्ते आंटी।
4: नमस्ते नमस्ते बेटा, ये तो आपकी बेटी है ना।
1: जी।
4: सुंदर तो है।
1: जी आपका बहुत शुक्रिया।
4: आओ बेटा बैठो इधर, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने।
5: मैंने बीएड किया है।
4: ओ पढ़ाई तो काफी की है, बस घर में ही रहती हो या कुछ काम भी करती हो।
5: जी पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ और बस घर के काम में माँ की मदद।
4: अच्छा जी, दो मिनट। हाँ बेटा कैसी लगी तुम्हें।
2: माँ मुझे सुमन पसंद है, इसके व्यवहार में जो सादगी और सरलता है, बस ऐसा ही जीवन साथी मुझे चाहिए।
4: तो मैं आगे की बात कर लेती हूँ फिर, बस तुम अपना मुंह बंद रखना।
2: उसका कोई मतलब नहीं माँ, मैंने जो आपको घर पर कुछ कहा था।
4: कहा तो मैंने भी था तुमसे, तुमसे वो होगा कि नहीं, मैं तुमसे वही चाहूंगी जो मैंने कहा है। चुप रहना अब, जितनी तुम्हारी राय चाहिए थी उतनी ले ली मैंने। हमारी तरफ से तो हाँ है।
1: सच कह रही हैं क्या आप।
4: हाँ भाई, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। वैसे कांता जी

0: बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी है आपसे।
1: हाँ पूछिए ना।
0: शादी में अपनी बेटी को क्या भेंट दे रही हैं आप वैसे? इस बारे में कुछ सोचा है आपने? अब क्या है ना कि हमारे घर में तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, पर समाज में दिखाना तो पड़ता ही है।
1: हाँ सही कह रही हैं आप। वो क्या है ना, बात ऐसी है कि सुमन के बाबूजी तो है नहीं। सुमन और मैं इतना ही कमा पाते हैं कि बस घर चल जाए। फिर भी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी को जरूर दूंगी।
0: अरे कांता जी देखिए, अब हमें क्या है कि हमारे लेवल के हिसाब से समाज में दिखाना भी पड़ेगा।
1: तो आप बताइए फिर मुझे, तो मैं उस हिसाब से फिर तैयारी करूंगी।
0: बस वही 4-5 तोला सोना, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, एक बड़ी सी गाड़ी और इसके अलावा जो भी आपके मन में हो वो दे दीजिए।
1: जी इतना सब क्यों?
0: ज्यादा है क्या? नहीं हो पाएगा आपसे?
1: नहीं, मैं कर लूंगी।
2: एक मिनट आंटी, मुझे एक दुविधा है।
0: हाँ बेटा बताओ।
2: आप आपके बेटे के लिए जीवन साथी देखने आई हैं या अपने घर के लिए सामान?
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
2: आपने अभी जो ये लंबी सूची पकड़वाई है, लगता है आपको सामान चाहिए।
0: बेटा जब बड़े बात कर रहे होते हैं बीच में मत बोला करो।
2: क्यों आंटी, आपको पता नहीं है दहेज मांगने पर क्या हो सकता है?
1: अरे बेटी चुप कर तू,
0: बहुत ही बदतमीज बेटी है आपकी।
3: सही कहा माँ आपने, बदतमीज तो बिल्कुल है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा बदतमीज ही होता है। पर ऐसे सच बोलने वाली सचमुच मुझे पसंद है।
0: तुझे मैंने घर पे कुछ समझाया था ना?
3: जी माँ, और मैंने भी आपको ये जो अभी आपने लिस्ट दी है ना, इसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
0: क्या जेल? वो कैसे?
3: हमारे देश की सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961, भारतीय दंड संहिता IPC के तहत बनाए गए हैं, जो दहेज लेने देने और मांगने का अपराध मानते हैं। इस कानून के तहत दहेज के लेने देने पर 5 साल की तो कैद है और 15,000 तक का जुर्माना भी है माँ।
2: सही कहा है इन्होंने, अपराध को सहने वाला भी बराबर जिम्मेदार होता है। जितनी सजा दहेज लेने वाले के लिए है उतनी ही सजा दहेज देने वाले के लिए भी है माँ।
3: हमारी सरकार इतने कानून बना रही है, इतना सोच रही है इन प्रथाओं को रोकने के लिए, और हम भी सहयोग नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ सकता है?
1: मुझे माफ कर दे सुमन बेटा, तूने मुझे इतना समझाया फिर भी मैं नहीं समझी, माफ कीजिए। और मिला बहन जी, मेरी बेटी की शादी तो मैं वहीं करवाऊंगी जहां उसकी खुशी हो और जहां दहेज देने के लिए मुझे मजबूर न किया जाए। और संदीप बेटा, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत ही नेक और समझदार लड़के हो।
0: नहीं कांता बहन, मुझे जेल नहीं जाना। आपका तो पता नहीं पर मेरा बेटा मुझे जेल जरूर पहुंचा देगा अगर मैंने दहेज मांगा तो। मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई है, अब मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो भी सिर्फ आपकी मर्जी से और खुशी से।
1: तो फिर रुकिए, अभी मिठाई लेकर आती हूँ मैं। समधन जी
0: जल्दी कीजिए।
3: थैंक यू सुमन, आपने आवाज उठाई तो मुझे भी हिम्मत मिली।
2: थैंक यू संदीप जी, आपने भी समझा और सपोर्ट भी किया, थैंक यू गॉड।
4: तो श्रोताओं देखा आपने किस प्रकार शिक्षा समाज में हो रहे अपराध को रोकने में सहायक हुए। साथ ही एक और बात ध्यान देने की है, वो है ईश्वर पर विश्वास। जी हाँ, ईश्वर पर विश्वास, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। जिस प्रकार सुमन ने प्रार्थना की और ईश्वर पर विश्वास दिखाया, उसी प्रकार हमें भी जीवन के कठिन समय में उस पर विश्वास करना चाहिए और अच्छे समय में उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो श्रोताओं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए। अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या हमें पत्र भी लिख सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
5: 8527449455। जी हाँ, 8 5।

0: 2744955।
1: तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं, दहेज लेना और दहेज देना सही है या गलत? अवश्य इस बारे में सोचिए और हमें जवाब दीजिए। अब मैं इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आवाजें आती रही, कुछ कानों तक पहुंची तो कुछ दिलों में बस गई।
2: 90 वर्ष पहले एक ऐसी आवाज जो देश की धड़कन बन गई,
1: नाम है आकाशवाणी।
2: भारत की आजादी की पहली सुबह हो, चंद्रयान की पहली उड़ान,
3: वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून।
1: सीमा पर जवानों की हिम्मत हो या किसानों की मेहनत की बात,
2: हमने हर लम्हे को, हर भावना को आवाज दी 1936 से लेकर आज तक।
1: आकाशवाणी है हर भारतीय की आवाज, 90 वर्ष भरोसे की यात्रा।
2: आइए आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ पर हम मिलकर कहें,
1: ये आकाशवाणी है, सफर आगे भी जारी है, नई उमंगों, नई तरंगों के साथ।
2: 90 वर्ष आकाशवाणी के, देश की धड़कन, हर दिल की आवाज, आकाशवाणी। आकाशवाणी,
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं गैर फिल्मी गीतों का सजा कार्यक्रम सुरबहार, और कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

0: सुरबहार कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब समय है कार्यक्रम संजीवनी का।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संदीप कुमार भाटिया। आज हमें गट हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे, आंतों का स्वास्थ्य क्या है विस्तार से समझाएंगे। संदीप कुमार भाटिया जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर, मैं सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार देता हूं और धन्यवाद करता हूं ऑल इंडिया रेडियो का।
1: जैसा कि मैंने कहा कि गट हेल्थ के बारे में आपसे जानकारी लेंगे, उसकी वजह एक ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन गट हेल्थ के बारे में इतना कुछ चलता है कि गट हेल्थ के लिए ये खाएं, गट हेल्थ के लिए ऐसा करें, तो हमने सोचा क्यों ना आयुर्वेदाचार्य को बुलाया जाए और गट हेल्थ के बारे में विस्तार से जानकारी ली जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप हमें बताइए, ये गट हेल्थ असल में है क्या?
2: सर बेसिकली अगर हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो हम अपनी अग्नि की बात करते हैं, डाइजेस्टिव फायर की बात करते हैं।
1: अच्छा, जठराग्नि की बात करते हैं।
2: नॉर्मली क्या होता है ना सर, जैसे हम सबको पता है कि हमारी जठराग्नि होती है जो हमारे खाने का पाचन करती है। वैसे अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें से
1: 13 प्रकार की अग्नि
2: होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होती है जठराग्नि। और उसके बाद हमारी धातु अग्नि आती है, पंच महाभूत अग्नि आती है, और जो हमारी जठराग्नि है वो इन सभी प्रकार की बाकी 12 अग्नियों को बल प्रदान करती है।
1: ये
2: प्रबल है सर। और वैसे भी अगर हम देखें हमारा जो शरीर है सर, अगर हम बेस की बात करें, हमेशा हमें अपने रूट्स की बात करनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, तो कोई भी चीज है पंच महाभूतिक ही है, और जो हम आहार खा रहे हैं वो भी पंच महाभूतिक है। हाँ, जो जठराग्नि है उसमें किसी एक महाभूत की प्रधानता ज्यादा है, जैसे कि अग्नि महाभूत की प्रधानता ज्यादा है, और वही हमारी जठराग्नि है। और जो भी हम आहार खाएंगे फिर वो आहार का जब पाचन होगा तो उसकी अब्जॉर्प्शन भी पंचमहाभूत के हिसाब से ही होनी है सर।
1: यानी देसी भाषा में कहें तो हमारे शरीर की भट्टी है।
2: हाँ, शरीर की भट्टी है, बिल्कुल शरीर की भट्टी है, बिल्कुल। और अगर हम बात भी करें सर, तो सभी रोगों का कारण आप आयुर्वेद में चरक संहिता देख लो, शुश्रु संहिता देख लो, भागवत संहिता देख लो, जो हमारी मेन संहिता है आयुर्वेद की, उन सब में यही बताया गया है कि जो हमारी जठराग्नि है वही स्वास्थ्य का मूल भी है और वही सभी रोगों का मूल भी है। छोटी सी कोटेशन है, रोगा सर्वेशम मंदाग्नि की, बेसिकली अगर अग्नि मंद रहेगी तो वही सभी रोगों का कारण है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो हमारा गट हेल्थ है वो हमारी अग्नि पे डिपेंड करता है, और अग्नि हमारी कैसे ठीक रहेगी वो हमारे आहार विहार पे डिपेंड करता है।
1: उसके बारे में हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे।
2: बिल्कुल सर,
1: अभी आपसे इसके बारे में और जानना चाहेंगे। आपने कहा कि जब हमारी अग्नि या जठराग्नि मंद रहेगी तो वहां रोग जो हैं वो पनपेंगे।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: तो सुनने में ये भी आता है कि अग्नि जो है मंद होती है, तीव्र होती है या विषम होती है। तो ये तीनों अवस्थाओं को समझाइए और इसमें से कौन सी अवस्था जो है वो हमारे शरीर के लिए बेहतर है।
2: सर अगर हम अग्नि की, जैसे हमने बात की कि अग्नि हमारी 13 प्रकार की होती है जिसमें मूल अग्नि जठराग्नि है, और हम अगर अग्नि के और प्रकारों की बात करेंगे तो अग्नि और तरह से 4 प्रकार की भी होती है, जिसमें से तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि, ये तीनों अग्नियां दूषित अग्नियां हैं। और
1: अच्छा।
2: हाँ, और एक अग्नि होती है सर सम अग्नि, हमें अपनी अग्नि को सम रखना है
1: इन तीनों के अलावा।
2: हाँ, इन तीनों के अलावा हमने अपनी अग्नि को सम रखना है। सबने त्रिदोष का कंसेप्ट सुना होगा,

0: जी,
1: कि हमारे
0: जी,
1: शरीर में तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ
0: जी।
1: वैसे अगर हम अग्नि की बात करें, अगर वात बड़ा रहेगा तो वो विषम अग्नि रह जाएगी, अगर पित्त बड़ा रहेगा तो वो तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगी, अगर कफ बड़ा रहेगा तो वो मंद अग्नि हो जाएगी। और उसी प्रकार से जिस प्रकार की अग्नि जैसी रहेगी, उसी प्रकार से उस दोष के अनुसार उसमें रोग उत्पन्न होंगे। हमें अपनी अग्नि को सम रखना है,
0: हमें अपनी अग्नि को
1: सम रखना है,
0: यानी बैलेंस रखना है।
1: बिल्कुल सर,
0: आपने कहा कि ना मंद हो, ना तीव्र हो, ना विषम हो, लेकिन सम हो, है ना।
1: बिल्कुल,
0: अगर सम है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो जो हमने

0: अगर मैं बात करूं, पूरे शरीर में से बात करूं, तो अग्नि सबसे प्रधान है ना। अगर आप अच्छा, अगर आपकी अग्नि अच्छी रहेगी तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उसी पर डिपेंड करेगा आपका ओवरऑल ग्रोथ, आपकी सोसाइटी का ग्रोथ और आपका खुद का भी ग्रोथ।
1: जी
0: तो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बोलते हैं ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी अग्नि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से सारी एनर्जी रिसोर्सेस हमारे शरीर को जानी है। मैं 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा, थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाना चाहूंगा। एक होता है दिनचर्या, एक होता है सर ऋतुचर्या, है ना। अगर हमें अपनी अग्नि को सम रखना है तो सम अग्नि रखने के लिए डिपेंड करता है कि हम कैसा आहार ले रहे हैं, कैसा विहार ले रहे हैं। अगर हम विहार की बात करें, और सर शायद आप भी इस चीज को फॉलो करते होंगे, अगर हम विहार की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है। स्लीप पैटर्न आपका प्रॉपर होना चाहिए, मींस
1: आपकी नींद है।
0: हाँ, नींद प्रॉपर होनी चाहिए सर। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे, है ना, तो आपकी अग्नि भी विषम, जैसे कभी ज्यादा सो लिए, कभी कम सो लिए, कभी टाइम से नहीं सोए, तो उससे भी अग्नि आपकी इफेक्ट होती है। प्रॉपर नींद से प्रॉपर नींद को मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो मैं चीजें मैंने खुद पे की, इंप्लीमेंट की, वही मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। जब मैं अरविंद में पढ़ी, खुद पे इंप्लीमेंट की, फिर लोगों को एडवाइस किया,
1: आपने पढ़ा, फिर
0: प्रैक्टिकल किया, फिर ही एडवाइस, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट क्या क्या होते हैं उसके रिजल्ट। तो अगर हम विहार की बात करें तो विहार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट 10-11 तक सो जाना चाहिए। वो भी मैं लीस्ट एटलीस्ट बोल रहा हूँ, आइडली तो 9-9:30 बजे सो जाना चाहिए, और सुबह एटलीस्ट 4:30 या 5 या 5:30 मैक्स उठ जाना चाहिए। 6-7 आवर्स की स्लीप जरूरी है सर, आइडियली तो 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है।
1: और डॉक्टर संदीप, यहां मैं आपको रोकता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 6 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए हमें सोना है, तो मैं जितनी भी मर्जी रात को सोऊं, सुबह मुझे 6 घंटे पूरे करने?
0: नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखो, आयुर्वेद में नेचर की बात करें, हर चीज का एक टाइम है। अगर अंधेरा हो रहा है तो सोने का टाइम है। कई लोग जैसे बोलते हैं 1 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठे, तो वो मेरे को नहीं लगता प्रैक्टिकली।
1: हाँ, उनका लॉजिक ये होता है,
0: लॉजिक गलत है।
1: 6 घंटे के लिए सोना है,
0: रात सोने के लिए होती है, दिन जागने के लिए होता है। तो आइडियल स्लीपिंग टाइम इज बिटवीन 9-5। आप 10:30 से 5:30 कर लो, आप 11 से 6 कर लो, चलो वो भी चलेगा, नो इश्यू। तो ये स्लीपिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप दिन में जो आपकी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए 1-2 आवर्स की। तो ये हमारा विहार का पैटर्न हो गया, है ना। बाकी ऋतु के अनुसार तो अलग अलग चलता है सर, लेकिन हमारी डेली हैबिट्स में एक तो विहार हमारा ऐसा होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज आहार। सर एक चरक में श्लोक है, भागवतो चरक में मिलता जुलता श्लोक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि षष्ठी चावल शाली चावल, मुदक सैंदव आमलक, है ना। मूंग की दाल होगी, सैंदव नमक हो गया, आंवला हो गया, आंतरिक्ष जल हो गया, पय हो गया यानी कि दूध हो गया, घृत हो गया, और जंगल जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए जंगल मांस रस हो गया।
1: अच्छा, वहां इसका वर्णन है?
0: हाँ, ये वर्णन है सर। मतलब ये चीजें कॉमनली आप किसी भी ऋतु में सेवन कर सकते हो। ये उन्होंने बोला है कि ये ऐसा आहार है जो हमें डेली यूज करना चाहिए। चावल में षष्ठी शाली या शाली चावल, आजकल तुम सफेद चावल खाते हैं ना सर, है ना, वो वाले नहीं
1: जी।
0: रेड राइस सबसे बेस्ट है, ठीक है, व्हाइट राइस इज नॉट बैड, है ना, खाने के लिए खा सकते हो। तो षष्ठी शाली उन्होंने बोला है, यव सर, आजकल जैसे हम मिलेट्स की बात करते हैं, आजकल मिलेट्स इज वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। आयुर्वेद की अगर हम बात करें, जो आजकल मॉडर्न में सर बात की जा रही है ना, सेम ही आयुर्वेद का ही फंडा था इतने सालों पहले, वो यव को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, है ना। यव सबने सुना होगा, है ना। तो यव में हाई इन फाइबर, है ना, हाई इन न्यूट्रिएंट्स, है ना, और साथ में जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, अमृत है सर यव, अगर हम बोले, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जैसे घृत हो गया, दूध हो गया, मधु हो गया, है ना, और जो नॉन वेज उनके लिए जंगल मासरस हो गया, है ना, मीन जंगल देश में जो एनिमल्स हैं उनका मासरस हो गया
1: जंगल।
0: हाँ, जंगल सर, 3 देश होते हैं, साधारण जंगल और अनूप। अनूप यानी कि कोस्टल रीजन, मींस अगर आप सर, 2 चीजें होती हैं, एक होती है सप्लीमेंटेशन, एक होती है फोर्टिफिकेशन। अगर हम आज के जमाने के हिसाब से देखें, सप्लीमेंटेशन, किसी का खून कम है, हीमोग्लोबिन 8 है 7 है, तो उसको आयरन की टेबलेट देंगे, दैट इज सप्लीमेंटेशन। अगर किसी का खून कम है और हमने उसमें खाने में कुछ, जैसे कि हमने घिया, तोरी, टिंडा, पालक, साग, बीन, ब्रोकली, मेथी, सारे हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो फाइबर और आयरन रिच है, तो हमने क्या किया, उसको मैश करके बॉईल किया, है ना, उसकी प्यूरी बनाई और उस प्यूरी से आटा गूंद लिया, उसी प्यूरी को हमने दाल में पानी की जगह उसको डाल दिया, उसका डोसा बना लिया, डेट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, है ना। तो जब भी हमने आटा लेना है आहार की बात करें, तो आटे में हमने कभी भी होलसम कनक का आटा नहीं यूज करना सर। बेटर है अगर आप जो यव ऐड कर लो, रागी ऐड कर लो, बाजरा ऐड कर लो, सबसे बेस्ट है सर।
1: मतलब गेहूं की बात आप कर रहे हैं?
0: गेहूं तो सर आयरन में मेंशन ही नहीं है कि
1: कोई जिक्र ही नहीं है,
0: लेकिन हम पीछे से गेहूं यूज करते आ रहे हैं और हमें लगता है हम पहले से यूज कर रहे हैं, ये हमारा एशियंट का कुछ ऐसा होगा नहीं। मॉडर्न आजकल मिलेट्स की बात

0: कर रहा है। अरविंद ने हजारों साल पहले मिलेट्स को ही जोर दिया हुआ था
1: जी, जी, जी।
0: इसलिए उस टाइम
1: पे फिर हम मिलेट पे आ गए,
0: इसलिए हम फिर से मिलेट्स पे आ गए सर। तो आहार विहार बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि को सही रखने के लिए
1: जी। आहार विहार के बारे में आपने बात की, लेकिन इससे पहले जो मेरा सवाल आपसे ये था कि गट हेल्थ के खराब होने के कारण क्या है?
0: सर गट हेल्थ के खराब होने के कारण जैसे हमने आपने
1: और होता क्या जब गट हेल्थ खराब होती है, एक व्यक्ति को कैसा महसूस होता है और क्या प्रभाव क्या आता है उस पर?
0: सर अगर हम आज की डाटा में देखें तो 90% ऑफ पॉपुलेशन की गट हेल्थ खराब ही है, 90-95% पॉपुलेशन की गट हेल्थ खराब है, इन फॉर्म ऑफ ब्लोटिंग, इन फॉर्म ऑफ एसिडिटी, इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज एपिटाइट, भूख नहीं लगना, खाना नहीं पचना, गैस बनना, पेट में फारा सा बनना, कब्जी आना, या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टूल आना, जैसे खाना खाया वैसे ही ऐसा होना कि हमने स्टूल पास करना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीजें, मतलब 90-95% सर मैं आपको बोलूंगा सबकी गट हेल्थ खराब है। कारण क्या है गट हेल्थ खराब होने के? जैसे आपने अग्नि की बात की कि अग्नि तीक्ष्ण होती है, मंद होती है, विषम होती है। अगर हम इररेगुलर फूड हैबिट्स रखेंगे सर, जैसे मैंने आज ब्रेकफास्ट 8 बजे किया, कल मैंने ब्रेकफास्ट 10 बजे किया, परसों मैंने किया ही नहीं, मैंने ब्रंच कर लिया उसके बाद, या फिर मैंने डिनर, आइडल डिनर टाइम सर जैसे तो आयुर्वेद में लिखा है कि सूर्यास्त से पहले हमें डिनर कर लेना है,
1: वही आपसे ये पूछने वाला था मैं कि क्या रात का खाना खाना चाहिए?
0: सर रात का खाना,
1: रात का खाना नहीं कह रहा हूं, क्या रात को खाना चाहिए?
0: सर बिल्कुल खाना हमें रात को खाना चाहिए, बट वो खाना हमें अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो चलो गर्मियों में तो सूर्यास्त लेट होता है, मे बी 7-7:30,
1: सर्दियों में
0: 5-5:30। तो आइडियल टाइम जो प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है, मैं सर मेरा भाई आईटी सॉफ्टवेयर में है, मैं पहले आयुर्वेद को इतना फॉलो नहीं करता था, वो ज्यादा फॉलो करता था, तो जब मैंने उसके जब मैंने उस पर प्रैक्टिकल रिजल्ट देखे तो मैं उससे प्रभावित हुआ। क्या होता है ना, जो
1: उल्टा हो गया,
0: ये उल्टा हो गया, जो चीज आपके पास होती है आप उसके बारे में
1: उसकी कीमत नहीं
0: जानते। तो उसका सर एक रूल होता था कि उसने 6:30 तक खाना खा लेना है
1: जी,
0: है ना, तो उसकी गट हेल्थ बिल्कुल सही रहती है, कभी उसको ब्लोटिंग या कोई सिम्टम नहीं आया सर कभी भी
1: जी।
0: वो 80 में है तो मैंने भी वैसे स्टार्ट किया सर। फिर उसका एक फंडा ये भी था सर कि अगर हम विहार में वापस जा रहा हूं कि जैसे सर वैसे तो ऑल सीजन हमें नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए, वो भी आपकी अग्नि को सही रखता है, तो सम रखता है, बिल्कुल। अगर आप जैसे कई लोग गर्मियों तक भी गर्म पानी से नहाते रहते हैं, है ना, तो
1: सर्दियों में तो बहुत
0: सर्दियों में
1: तेज गर्म पानी से नहाते हैं,
0: बिल्कुल। तो सर नलके का ल्यूक वार्म वाटर आता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वही है सर, डिनर का आप बोल रहे थे, तो डिनर आइडली तो 6:30 में नहीं, चलो आप 7 तक कर सकते हो, अगर आप 7 से लेट हो गए तो आप डिनर ना करो, बेस्ट है
1: स्किप कर दो
0: सर
1: जी।
0: एक फंडा हमेशा याद रखना सर, जैसे मैंने आपको वो श्लोक बताया कि षष्टिशाली सैंधव, सैंधव नमक में सैंधव, आमलक अमल होता है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, यव हो गया, आंतरिक्ष जल हो गया, पय हो गया, मधु हो गया, ये हमने कॉमनली यूज करनी है अपनी डेली लाइफ में गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो पय यानी कि दूध, रात को सोते टाइम सर दूध लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: एक टाइम दूध लेना सर,
1: ये दूध गर्म लेना है?
0: गर्म बिल्कुल सर। आपने सर कोई भी चीज अगर खानी है, खाना खाना है या फिर दूध पीना है, तो हमेशा अगर हम चरक में जाएं, चरक में जैसे कि आहार विशेष आयतन बताए हैं कैसे खाना खाना है, भागवत में भी बताए हैं आहार विशेष आयतन, सुश्रुत में भी बताए हैं, द्वादश अश्विन विचार बताए हैं कैसे आपको खाना खाना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है खाना मस्ट बी हॉट, मतलब खाने लायक, मतलब गर्म होना चाहिए, है ना, ठंडा खाना कभी
1: नहीं
0: सर, ठंडा खानी वो ग्रीष्म ऋतु अलग है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन खाना हमेशा गर्म होना चाहिए सर। तो गट हेल्थ, अग्नि खराब होने का फिर गट हेल्थ खराब होने के कारण यही है सर, अगर आप इरेगुलर फूड हैबिट्स रखेंगे तो अग्नि आपकी विषम हो जाएगी, जो अगेन दोष अग्नि है, विषम अग्नि से विषम अग्नि से वात बढ़ेगा, है ना। अगर आप कोई स्पाइसी फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो उससे आपकी अग्नि मंद हो सकती है, तीक्ष्ण हो सकती है, वही पित्त और कफ बढ़ेगा, अग्नि सम नहीं रहेगी। आजकल बहुत ज्यादा सर ऐसे चलता है, जैसे इरेगुलर फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, प्रोसेस फूड की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, फिर अगर हम बात करें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, ये सब कारण है सर हमारे अग्नि के खराब होने के, सबसे इंपॉर्टेंट।
1: वो जो आपने सम कहा है वो हिल जाता है,
0: वो पूरी तरह से
1: वो ट्रैक से उतर जाता है,
0: बिल्कुल सर, 95% का ट्रैक से उतरा हुआ है अभी भी।
1: डॉक्टर संदीप कुमार भाटिया, आप गट हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, आपकी बातों से एक रुचि पैदा हो गई है कि इसके बारे में और भी जाने समझें, क्योंकि गट हेल्थ जैसा कि आपने कहा कि अगर स्वस्थ है तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों तरह से जो है प्रसन्नचित रहेगा,
0: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: और आप रोगों से मुक्त रहेंगे,
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और एक हम अपने

0: भगवान की पसंद का गाना भी शामिल करते हैं, तो यहाँ रुकते हैं, संगीतमय माहौल बनाते हैं, आपकी पसंद का गाना शामिल करते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
1: ठीक है सर,
0: तो बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: सर एक थोड़ा पुराना गाना है, मतलब पर काफी अच्छा गाना है, लग जा गले
0: वाला, बहुत ही प्यारा गाना है।
1: यस सर
0: जी, सुकून देता है ये,
1: सुकून देता है सर, गट को भी सुकून देगा, मन को भी सुकून देगा, दोनों को सुकून देगा।

0: एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य संदीप कुमार भाटिया, गट हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर भाटिया,
1: यस सर, सुबह उठ के सर सबसे पहले तो हमें 2-3 ग्लास गुनगुने पानी के पीने चाहिए।
0: 2 या 3?
1: 3 ग्लास, डिपेंडिंग ऑन सर अपनी अपनी कैपेसिटी है लोगों की, तो 2-3 ग्लास तो सर, मतलब 2-3 ग्लास, 3 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं।
0: ये तो सुबह उठते पहला काम ही,
1: सुबह उठते सर पहला काम ही होना चाहिए। और अगर कोई शुगर का मरीज है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी के थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का भी इशू रहता है गट हेल्थ में, तो वो उस पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का भी यूज कर सकता है कि 2 टीस्पून त्रिफला चूर्ण के डाले ल्यूकवॉर्म वाटर में और उसके साथ उसका सेवन।
0: अच्छा डॉक्टर भाटिया, आपने त्रिफला के बारे में बात की है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी बताते हैं कि त्रिफला शाम को 5 बजे के करीब लेना चाहिए या रात को सोते वक्त दूध के साथ लेना चाहिए, आप कह रहे हैं कि सुबह भी लेना चाहिए।
1: सर त्रिफला एक तरह से
0: किसी खास स्थिति के लिए तो अलग टाइम हो सकता है,
1: हाँ सर,
0: लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए
1: सर त्रिफला एक तरह का रसायन है, बट अगर हम सिंपल इसका सिंपल चूर्ण का भी सेवन करें ना सर, तो वो बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है। और आइडियली तो सुबह शाम दोनों टाइम इसका सेवन करना चाहिए, सुबह उठते खाली पेट पानी के साथ ले लें और रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं सर।
0: सुबह
1: को जरूरत नहीं,
0: शाम को ले सकते हैं पानी के साथ या दूध के साथ,
1: गुनगुने पानी के साथ बेटर है या फिर मधु के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं सर। भोजन के साथ पानी पीने का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए
0: जी।
1: जो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, जो संहिता में भी मेंशन है भागवत संहिता में, कि भोजन से 1/2 आवर पहले तक तो पानी सर नहीं लेना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद भी पानी नहीं लेना, एटलीस्ट 45 मिनट्स तक पानी नहीं लेना
0: जी।
1: अगर आप पानी को बीच में पियोगे भोजन के बीच में तो वो अमृत के समान है।
0: तो कितना पीना है?
1: सिप सर, 2-3 सिप्स और वो भी ल्यूक वार्म होना चाहिए।
0: कहने का मतलब ये है कि भोजन के बीच में पानी लेना
1: ले सकते हैं,
0: वर्जित नहीं है,
1: वर्जित नहीं है, बिल्कुल वर्जित नहीं है। कभी भी क्या होता है ना सर, अगर आप कोई चीज असाथ में आपके लिए और आप उसका सेवन कर रहे हो, आपको उसको धीरे धीरे छोड़ के साथ में की तरफ आना है अपनी हेल्थ के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वेग हमने धारण नहीं करने की, भूख प्यास लग रही है तो पानी पीना है, लेकिन आइडियली ये खाना खाने से 45 मिनट्स पहले और खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद में पानी नहीं लेना गट हेल्थ के लिए। बीच में आप 1-2 सिप्स पानी ले सकते हो, नो इशू।
0: अच्छा पानी ये बताइए कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए?
1: सर आइडली अगर हम बात करें, हमारी जो बॉडी होती है ना सर, 2/3 हमारा बॉडी का वेट लिक्विड ही है, पानी ही है
0: जी,
1: है ना। और जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन यूनिट है हमारी बॉडी का, सेल्स को हाइड्रेट करने के लिए हमें उस लिक्विड क्वांटिटी को बना के रखना है। हम जो भी चीज खा रहे हैं उसको किडनी फिल्टर कर रही है, कोई भी ड्रग ले रहे हैं उसको फिल्टर कर रही है, तो उसके लिए भी हमें पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है। तो आइडली 4-6 लीटर तो आप

0: को लेना है सर आइडियली
1: जी,
0: और डिपेंड करता है सर बॉडी वेट पे।
1: एक आपने अपनी बातचीत में नमक के बारे में बताया था, सेंधा नमक,
0: सेंधा नमक सर,
1: लेकिन आजकल ये भी कहा जा रहा है कि आपको सफेद नमक भी इस्तेमाल करना चाहिए।
0: सर वो ये एक्चुअली क्या है कि जैसे हम गोइटर की बात करते हैं, थायराइड की बात करते हैं, तो अभी हमने सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन की बात की, तो जो हमारा जो सफेद नमक है उसमें आयरन की फोर्टिफिकेशन है,
1: आयोडीन की बात,
0: आयोडीन, बिल्कुल सर आयोडीन की, जैसे शुरू में मैंने वही षष्ठीशाली या भी जब से बोला था हमने कॉमनली यूज करना है, जिसमें सेंधा नमक में सेंधा नमक इज श्रेष्ठ, हमने दोनों यूज करने हैं।
1: तो क्या दोनों मिक्स करके भी
0: मिक्स खाए जा सकते हैं? नो इशू सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ पर्याप्त मात्रा में थोड़ा बहुत आयोडीन होता है। हाँ, जो हमारा नमक है उसमें हमने आयोडीन की फोर्टिफिकेशन की हुई है, तो उससे मैं डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन तो उसका मिल ही रहा है, फोर्टिफिकेशन मिल ही रहा है।
1: जब खराब होती है गट हमारी तो किस तरह से वो सामने आता है?
0: ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक जो आजकल हो रही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सर गट हेल्थ के खराब होने, और नसेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। अगर आप देखो किसी को खांसी होगी, कई लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं, या फिर जिनको नहीं नॉलेज है वो भी एंटीबायोटिक लिख देंगे, तो एंटीबायोटिक ओवर यूज बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ को खराब करने के लिए।
1: जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना आप कुदरती माहौल में अपने शरीर को रखेंगे, अपने आप रहेंगे,
0: बिल्कुल
1: आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी,
0: उतनी अच्छी रहेगी सर।
1: वैसे तो बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए मोटे तौर से?
0: सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर हम बोलें, मतलब वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर हम बात करें और
1: संक्षिप्त में
0: तो अगर हम बात करें अपने डेली लाइफ के हिसाब से, सबसे इम्पोर्टेंट हमें प्रोसेस फूड अवॉइड करना है। पैकेट फूड टाइम दे लाइक बिस्किट, नमकीन, फ्रूट केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और प्रोसेस फूड में बर्गर, नूडल्स और पिज़्ज़ा, चाउमिन, ये सब चीज़ें सर, जो भी हमारा फूड प्रोसेस है और जो भी पैकेट फूड आइटम्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनको अवॉइड करना। सेकंड, स्लीप पैटर्न को नॉर्मलाइज करना। थर्ड, रेगुलर योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और थोड़ा बहुत रनिंग, जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है उस स्पोर्ट्स को
1: मतलब एक्टिव रहना।
0: एंड जो कॉमन चीज़ें हैं सर, जैसे मैंने आपको बताया कि घृत हो गया, सेंधव हो गया, आंवला हो गया, यव हो गया, सस्टिक शाली चावल, जितना आप अगर आपको मिलते हैं रेड राइस, और अगर इतनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है ना, तो वो चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करना।
1: मोटा अनाज
0: बिल्कुल, मिलेट्स इंक्लूड करना। टाइम से सर खाना खाना, तीनों टाइम एक रेगुलर टाइम पे खाना खाना। अगर आप तीन की जगह दो मील्स भी लोगे सर, वो भी बेस्ट है,
1: चलेगा।
0: दो मील्स बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। सुबह का खाना और शाम का खाना बेस्ट है। बीच में फ्रूट्स ले लीजिए खाने से पहले, और खाने के बाद पानी को अवॉइड करना। रात को सोते टाइम जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, दूध एक टाइम पे लेना सिर्फ रात को सोते टाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, खाने में घृत को ज़रूर ऐड करना। और जैसे सर अगर हम माय गवर्नमेंट की प्लेट की भी बात करें, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक अपनी प्लेट इंक्लूड की है, और आयुर्वेद की भी बात करें सर, तो हमारा जो एब्डोमेन है वो अगर आयुर्वेद की बात करें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हाफ पार्ट हमारा फूड का होता है सॉलिड का, और 1/3 पार्ट से लिक्विड्स का होता है। उस लिक्विड में जूस आ सकता है, तक्कर आ सकता है, दही आ सकता है, और 1/3 पार्ट हमें खाली रखना है। दो रोटी की भूख है सर, तो 1.5 रोटी खाई जाए।
1: जी,
0: मतलब 33% आपको वेकेंट रखना है। एक चीज गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, दही और लस्सी, तक्कर। तक्कर को आयुर्वेद में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है सर। मैं
1: जिसको छाछ कहते हैं,
0: बिल्कुल छाछ कहते हैं सर। 3-4 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां पे सब लोग बैठे थे सर, कुछ पीजे से थे, कुछ अलग अलग क्लिनिक से थे, तो गट हेल्थ पे सर वो बहुत बड़े डीएम थे कोई गेस्ट्रो के, वो ले रहे थे टॉक, तो उन्होंने सबसे पूछा कि बेस्ट प्रोबायोटिक क्या है आपके लिए, आप पेशेंट को बेस्ट प्रोबायोटिक क्या एडवाइस करोगे
1: जी।
0: सबने अलग अलग कंपनीज के नाम लिए, फिर बैक्टीरिया जो बेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका नाम लिया, तो एक मैं अकेला उस कॉन्फ्रेंस में था जिसने तक्कर का नाम लिया।
1: अच्छा।
0: और वो बहुत इंप्रेस हुए मेरे से, क्योंकि वही हमारा नेचुरल प्रोबायोटिक है सर। ये जो हमारे जो भी पैकेट में आते हैं कर्ड विद प्रोबायोटिक या फिर कुछ ऐसा वैसा जो भी आता है ना, बेस्ट इस तक्कर का आप यूज कीजिए घर पे, अगर आप अपने छाछ बनाइए तो उससे बेस्ट
1: कुछ लस्सी।
0: बिल्कुल सर, आप गुजरात चले जाइए, जामनगर चले जाइए, यहाँ पे भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो खाने के साथ आपको लस्सी देंगे ही देंगे।
1: जी। अच्छा, लस्सी पीने का उपयुक्त समय क्या है?
0: खाने के साथ सर,
1: दिन में कब तक, कितने बजे तक हम लस्सी का सेवन कर सकते हैं?
0: सर जब आप अपना लंच कर रहे हो, आप लंच के साथ लस्सी लो एक गिलास फुल, नो इशू।
1: जैसे आप पानी पीने के लिए मना करते हैं लेकिन लस्सी पीने के लिए मना नहीं करते,
0: क्योंकि लस्सी
1: खाने के साथ।
0: हाँ बिल्कुल सर, लस्सी मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि अगर आप लस्सी में देखोगे तो लस्सी में अमल रस होगा, अमल रस अगेन अग्नि को बढ़ाता है सर।
1: अच्छा,
0: डाइजेशन करेगा, प्लस लस्सी में प्रोबायोटिक्स भी होंगे, अच्छे बैक्टीरिया होंगे जो हमारे

0: जो भी हमने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे सर।
1: वो अग्नि को मंद नहीं करेंगे,
0: अग्नि को मंद नहीं करेंगे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बता दीजिए कि गर्मी के मौसम में, जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में हम जो गर्मी से जुड़ी चीजें वो खाएंगे, अपने आप को ठंडा रखने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन कौन सी ऐसी कोई खाने की चीज है जिसे शामिल करना जरूरी है गर्मी के मौसम में, आने वाली वर्षा ऋतु के मौसम में?
0: नॉर्मली क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होना शुरू हो जाता है सर। वात का संचय यानी कि वात रूक्षता पैदा करता है शरीर में, डिहाइड्रेशन करेगा, पानी की कमी करेगा,
1: ड्राइनेस
0: करेगा सर। तो हमने उसको ठीक करना है। तो वात को ठीक करने के लिए सर हमने एक तो गर्मियों में स्निग्ध चीजों का सेवन ज्यादा करना है, स्निग्ध चीज का सेवन होना चाहिए, शीत चीज का सेवन होना चाहिए, क्योंकि सूर्य का ताप भी बहुत ज्यादा होता है। लघु आहार लेना है। आहार दो तरह का होता है सर, गुरु आहार और लघु आहार। लघु आहार ऑल सीजन, कोई भी सीजन ले लो, अग्नि को बढ़ाएगा, ज्यादा मात्रा में भी खा लोगे तो नुकसान नहीं करेगा। गुरु आहार अग्नि को मंद करता है। आप गुरु आहार को पूरी मील के हाफ से ज्यादा नहीं खा सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं खाना चाहिए गुरु आहार को। तो ग्रीष्म ऋतु में एक तो कोई भी आहार लेना है, लघु लेना है सर, मिलेट्स को इंक्लूड करना है, और साथ में तक्कर जरूर लेनी है, दही आप ले सकते हो, और साथ में इसमें पानक, पानी की कमी नहीं होने देना, खाना लघु मात्रा में लेना है, मील आप दो लो। तो जो हमारी दो ऋतु है ना सर, ग्रीष्म और वर्षा, इस टाइम पे हमारा शरीर का बल भी सबसे मंद है और अग्नि का बल भी सबसे मंद है। तो इस टाइम पे हमने लघु आहार का सेवन करना है।
1: आजकल कांजी के बारे में भी सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है।
0: हाँ जी सर,
1: कांजी किस चीज की कांजी होनी चाहिए? वैसे आमतौर से तो हम काली गाजर की देखते हैं,
0: हाँ
1: वो ही पीते आए, अब लोग तरह तरह की कांजियां बता रहे हैं
0: सर। वैसे अगर मैं आपको बात करूं तो मुरिंगा एक
1: जी
0: है सर, उसकी बेस्ट है सर, उसका आप बना सकते हो, उसका पाउडर बना के उसकी भी कांजी फॉर्म में उसका सेवन कर सकते हो सर।
1: वो पाउडर को पानी में डाल,
0: हाँ रेडीमेड पाउडर भी आता है सर,
1: विद राई,
0: हाँ विद
1: नमक,
0: हाँ नमक, नींबू भी डाल दो सर आप टेस्ट के लिए, कोई इशू नहीं है। नींबू तो एक तरह से पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, है ना, कोई इशू नहीं है। वो मुरिंगा बेस्ट प्लांट है सर, मुरिंगा का आप सेवन कर सकते हो, उसकी भी कांजी का यूज कर सकते हो सर।
1: तो कांजी का इस्तेमाल आयुर्वेद में कुछ विशेष महीनों के लिए, दिनों के लिए बताया गया है?
0: सर वैसे अगर हम देखें ना सीजन्स के हिसाब से, सीजन्स में जैसे हम बोल, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे थे तो इसमें रूक्षता बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें हमने शरीर को हाइड्रेट रखना है। तो हाइड्रेशन के लिए आप चाहे आयुर्वेद फॉर्म में हिम ले लो, पानक ले लो, मंथ ले लो, छाछ ले लो, कांजी ले लो, मतलब हाइड्रेट रखना है।
1: कोई ठीक है, कांजी पीना बेहतर है ना?
0: बेहतर है सर, ले सकते।
1: तो इसे भी खाने के साथ पी सकते हैं कि अलग से?
0: नहीं सर, अलग से,
1: अलग से, अलग से। तो संदीप कुमार भाटिया जी, बातें तो बड़ी रोचक हैं, लेकिन समय जो अनुमति नहीं दे रहा, जाते जाते आप इस प्रोग्राम के जरिए कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए?
0: अगर हम अपनी गट को हेल्दी रखेंगे तभी हम अपने शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर संदीप कुमार भाटिया, आप हमारे इस प्रोग्राम संजीवनी में आए और गट हेल्थ के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, विस्तार पूर्वक आपने समझाया कि हमारी जो गट हेल्थ है, हमारी जो अग्नि है, हमारी जो जठराग्नि है, वो सम अवस्था में रहनी चाहिए, ना मंद ना तीव्र ना विषम। सही है डॉक्टर साहब?
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। तो इस प्रोग्राम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ के संजीवनी प्रोग्राम में आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जी ये प्रस्तुति देखें।
1: इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथ ही आकाश भारद्वाज ने, प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संजीवनी, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब आपको बता दें कि दूरदर्शन चंडीगढ़ पर आज कौन सा कार्यक्रम पेश किया जाएगा, किस समय पर। श्रोता, 2:20 पर दूरदर्शन चंडीगढ़ पर प्रसारित किया जाएगा साहित्यिक रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम साहित्य सृजन। दूरदर्शन चंडीगढ़ पर कौन कौन से खास कार्यक्रम किस समय पर पेश किए जाएंगे वो भी आपको बता दें। 3:30 पर विशेष प्रतिभागी की कला, साहित्य एवं मनोरंजन के क्षेत्र में उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम यादों का सफर आप सुनेंगे। कानूनी सलाह, ये कार्यक्रम 5:00 आप सुन सकते हैं। 5:30 पर कार्यक्रम सुनेंगे किसान, और चंडीगढ़ स्पीक से सुन सकते हैं 6:00।

0: देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये

0: आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम यादों की महफिल का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
1: कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मनहर उधास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। मनहर उधास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं। यादों

आमंत्रण प्राप्त होगी आप सुन रहे थे मेरे दोस्त अनुराधा ब्रह्मानी साथियों की आवाज़ें आनंद बख्शी की बो लक्ष्मीकांत परिवार का संगीत

0: रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में फीटे किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्कीम का जवाब दू जिसने मुझे इतने चुनाव से इन चीजों को हमार दे और सरकार को देखा अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मेरे पास जाने की मिला नौकरी, उस परिंदे में जाने की, और जब जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हुई, किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारत।

के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत महत्व पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पाशुकाल पवन उदास को। उनके जन्मदिन के मौके पर सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनाने खलनायक फिल्म से पवन उदास के साथ अलका यादव और साथियों की आवाज है। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मण गंग प्यारा मालकास

दास अनि कलामुका साथीको आवाजले खनाक सम्बन्धी तप सुनिरहे थे। आनन्द बक्सीकी बोल लक्ष्मीकान्त प्यारीलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनु उदास के आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं प्रीडी फिल्म के गीत में मनु उदास और अलका याग्निक को आनन्द बक्सीकी बोल है।

विभूति पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रवंश के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हमारे सौर झील की बड़ा बवाना। रात 8 बजे से लेकर है संजय श्रीवास्तव का निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्वगायक मोहनदास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुना रहे हैं जो उनकी आवाज में है। और अब आपको सुनाते हैं जाबाज फिल्म का एक गीत मोहनदास और साधु सरगम की आवाज़ें, मेरे मन के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आवाज कंचना मेनन की आवाज में आप सुन रहे कुर्बान फिल्म का गीत इंदौर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब कच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की।

0: देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए तो

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस प्रोग्राम से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना कंचन मनिया दास और अनंत की आवाज है इंदिवर के बोल कल्याण चंद्र जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्वनाथ मनिया दास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुन रहे हैं। और अब सुनते हैं मनिया दास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का गीत अमन बख्शी के बाद लक्ष्मीकांत परिणाम।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र से आज कौन कौन से कार्यक्रम किस समय पर पेश किए जाएंगे।

1:05 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। 1:10 ये समय रहेगा प्रादेशिक पंजाबी समाचारों का, जो कि आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से पेश किए जाएंगे। 1:15 पर आप आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार किस समय पर पेश किए जाएंगे वो भी आपको बता दें। 9:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, 5 बजे हिंदी में समाचार, सायंकालीन सभा में 6 बजे हिंदी में समाचार और 8:45 पर। सुनना न भूलिएगा फिल्म संगीत। 5:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आपके लिए लेकर आएंगे। 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उंगलियों का आनंद आप उठा सकते हैं। 6:10 पर हमारे केंद्र से प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे। 6:20 ये समय रहेगा प्रादेशिक पंजाबी समाचारों का, जो कि आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से पेश करेंगे। 7:47 पर रेडियो डायरी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार और 10:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर सांझ। तो ये थे आज आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से पेश किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

चार बजे आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम पिटारा, जिसमें आज के मेहमान कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से। आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, झलकी के अंतर्गत ना दोगे ना आप सुनेंगे। लेखक हैं संजय श्रीवास्तव और निर्देशक गोविंद पारेख। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। तो ये थे विविध भारती से पेश किए जाने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में पूरी सुरक्षा के बीच नगर निकाय चुनाव के लिए पुरामतों की गिनती जारी है। अभी तक अधिकतर जगह पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अम्बाला नगर निगम में महापौर पद के लिए भी भाजपा प्रत्याशी

0: प्रत्याशी अक्षिता सिंह ने 21,358 मतों से चुनाव जीत गई है। उन्हें कुल 52,794 वोट मिले हैं। इस बीच पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 6, 8, 9 और 10 के सदस्य के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। वार्ड नंबर 6 से भाजपा के पार्थ गुप्ता 866 मतों से विजयी हुए। वार्ड नंबर 8 से भाजपा के राजकुमार जैन ने 948 मतों से और वार्ड नंबर 9 से भाजपा के हरेंद्र मलिक ने 1623 मतों से चुनाव जीत लिया है। वार्ड नंबर 10 से भाजपा के शेखर विजयी हुए हैं। उकलाना नगर पालिका में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार निकिता गोयल को हराया। सोनीपत नगर निगम में सदस्य पद के लिए चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। वार्ड 1 से कांग्रेस के जय कुमार खत्री 270 वोट से जीत गए हैं। जय कुमार खत्री ने 3240 वोट हासिल कर भाजपा के वर्तमान पार्षद हरिप्रकाश सैनी को 270 वोट से हराया। भाजपा प्रत्याशी हरिप्रकाश सैनी को 2970 व निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट मनीष सैनी को 2840 वोट मिले। वार्ड नंबर 2 से भाजपा के मुकेश ने जीत दर्ज की। मुकेश ने 3405 वोट हासिल कर पूर्व पार्षद सुरेंद्र नैयर को 1532 वोट से हराकर जीत हासिल की। सुरेंद्र नैयर ने 1873 व कांग्रेस प्रत्याशी पवन ने 1576 वोट हासिल किए। वार्ड 3 से बीजेपी के सुरेंद्र मदान ने 3732 वोट हासिल कर कांग्रेस के अनुज छाबड़ा को 1081 वोट से हराकर जीत हासिल की। अनुज छाबड़ा को 2651 वोट मिले थे। सोनीपत नगर निगम से राजीव जैन 23,247 वोट से महापौर पद का चुनाव जीत गई है। उन्होंने कांग्रेस के कमल दीवान को हराया है। पंचकुला में नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए 8वें राउंड के परिणाम में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 14,894 वोट से आगे हैं। भाजपा के श्यामलाल बंसल को अब तक 25,598 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 10,704 वोट मिले हैं। राजेश कुमार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 1426 वोट के साथ तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं अभी तक नोटा को भी 550 वोट मिले हैं। सांपला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण कोच ने 687 वोट से जीत हासिल की। प्रवीण कोच को 4,391 वोट जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अंकित उलयान को 3,704 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा भी 6,200 वोटों से जीत गए हैं। भाजपा के अजय जांगड़ा को 9,392 वोट मिले जबकि बाबूलाल लांबा को मिले 3,156 वोट और वे दूसरे स्थान पर रहे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सदर बाजार चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक रखने और नीकलसन सड़क का नाम महाराणा प्रताप सड़क करने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद अंबाला सदर के कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए उन्होंने आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी। श्री विज द्वारा 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती के दिन सदर बाजार चौक पर महाराणा प्रताप की 12.5 फुट ऊंची और 16 क्विंटल वजनी मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। निस्वार्थ रूप से मरीजों की सेवा व मातृत्व भाव से मरीजों का इलाज करने के उद्देश्य से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को कल अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भिवानी के सामान्य अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर लगाकर नर्सिंग अधिकारियों को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने नर्सिंग दिवस मनाए जाने के पीछे के इतिहास की विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हूं तुसी गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरें सुनो। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने तमाम लिसनर्स के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। श्रोताओ, बचपन में हमने कई खेल खेले, उनमें से एक खेल है जो आप में से कई होंगे जिनके दिल के करीब होगा, चोर पुलिस का खेल। इस खेल में किरदार भले ही दो हैं लेकिन राहें दोनों की एक है, एक आगे दूसरा उसके पीछे। एक ऐसा ही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म राम बलराम से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आज दिल की उड़ान रोके ना रुके, जो ख्वाब बरसों से देखे किसी के होने के, आज वो पूरे होने चले। कैसे कटे ये दिन उन बिन, ये बेकरारी किसी और को भला कैसे पता चले। ये बेकरारी आप भी महसूस कीजिए खलनायक फिल्म के इस गीत में। आवाजें अलका याग्निक व साथियों की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत।

तन्हाइयों में भी जिनके होने का एहसास है, ये दिल हर धड़कन पर जिनका नाम ले धड़कता है, काश खुदा उसे जिंदगी भर के लिए हमारा बना दे। फिल्म है काश आप हमारे।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुरीला सा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदुवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में, तो हम उन्हें बता दें जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोवर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती है वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती है। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक साइड में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नहीं खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नाम हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी, माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के मुंह में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, इस सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को उन्हें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है। पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भी जो खा रहे हैं मुन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हो और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ, कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है। वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे जब सपना देखते हैं ना कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगह है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किनकी आवाजें हैं इस गीत में।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने की सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारी एक और साथी कहती है कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वही हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई।

बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन माने हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे साथी ने कहा कि आमतौर पर सपने में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपने में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली या कुछ लिख नहीं पाए या

पर सब चीजें ठीक नहीं हुई। ये जो एक भय है मन में वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था? फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रही है और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना। यही हमारे सवाल का सही जवाब था और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी।

साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार

0: तन पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहां है, इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आपात आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम, है आसमां तू बड़ा मेहरबान आज।

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

0: ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम खुल के ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, दौलत हराम की है ये किस काम की, हालो कसम इससे हाथ न लगाएंगे,
2: हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: जैसे सेठ बड़ा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल

0: क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनक लता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजय आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज

0: कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार

0: हुई थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टुंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी मान्यता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ले योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूहू सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी की बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमल जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नक में विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आँख कभी ना लाके होशियार, खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब

चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। क्या पिताजी और क्या माता, सासू ससुरा

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नजरों सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में साहिल निधानी की बोल एम दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार, क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई है तो देखते हैं लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, बताया भी जाएगा,
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने पहले कुछ तुम्हारा था
0: मुझे ना ये गानों की आवाज से बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो मैं अपनी दे देती हूं ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
1: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेले बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
1: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है।
1: और साथ ही खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
0: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार में मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से सुंदर से
1: आप मेंटेन है ना
0: ये वही तो बात है,
1: इसलिए हमें संतुलन रखना
0: है। हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद है,
0: संतुलन जरूरी है,
1: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते।
0: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो सुनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना? तो कश्मीर चले?
2: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियां, जिन्हें पश्मीना साड़ियां भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
1: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना

0: नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
0: पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ, कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती है। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प है, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती है। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां, ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती है। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बांधने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है।

0: सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल को किसी को देने एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब दू जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और सहकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान नौकरी, उस पर इंडिया में जाने नौकरी, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भरभर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भरभर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारे यही कारण कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देव को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगीपूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन
1: बहुत स्वस्थ रहते थे, काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग समय घर में चक्की भी चलना है, तो गेहूं भी पछोड़ना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, इतना सारे काम
0: थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है, उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय ही बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के यानी खाने के लिए जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में, इतने आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन मिलती है, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, हम स्वस्थ रह सकते हैं, सकती है। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक है, काम की मतलब कह दूं कि वेद भाती की मदद गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुनिए, बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: मंजरी जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, पायल बजने लगती है। तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है। सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। तो बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: एक साथी और लिखते सुना हम पढ़ लेते कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और आप लेते हैं एक अंतराल।

तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से? बहुत सुंदर, हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का

0: संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या बात है,
0: बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण मोहे जाणिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी। और हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के एक खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
0: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपुरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मोहरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए, यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने नहीं बताया।
1: हम लेके नहीं जा रहे, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इंग्लिश से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहें

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है, इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ही दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्प को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको तो अच्छा लगा होगा। तो देख दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वही खाने के लिए जीते हैं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवन पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख

0: करते, इसलिए विपरीत जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना। ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना, इसलिए मजा आता है जिसको द्वारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। ये सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, जो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौती को सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन हुए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, न कि केवल अहंकार। ही अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब।
0: बात है। और हम एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी, पहले तो ईमानदारी से काम करें। आप आत्मविश्वास से भरे और धैर्य के साथ करें तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है। बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी। तो हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिला दो, खुश हो जाते हैं और उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बिल्कुल, तवे में सेकते हैं तो हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री उन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टे मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटी छोटी टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात।

0: पौष्टिक भेल सब कीजिए।
1: यानी हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, यानी आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी खुश रह सकते,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी भी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा कि मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली या डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता
1: है।
0: और आप की सुनने सुनते हैं।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले डॉक्टर कितना भी मना कर दे लेकिन ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज
0: कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।

0: सारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, मुझे मच्छी लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
1: बार बार जाने को जी करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, जिसका नाम हमने नहीं लिया, उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
1: और खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, है ना, ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा।
1: और आप सभी को सोनाली पाठक
0: और वंशी वर्मा का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है।

0: के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती है। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर है जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूरोस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
2: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। ये खुश हुआ जी।
2: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं
1: इस यात्रा का? तो कोई भारत में खासतौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गाँव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुँचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
2: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटे तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी है?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों में इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे, जिनकी आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर आप ये अनाउंसर का वो दर्जा था, मतलब वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जानते ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बात होती। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी मेरे शुरू हुआ था
2: जी।
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबारी का फिल्म म्यूजिक का तो अगर कह रहे हैं क्या
2: जी,
1: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
2: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
2: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन

0: का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर।
1: बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, को एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज नंदलाल शर्मा जी, फिल्म शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गौरा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जिसको मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी बैठे उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपने पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल की दो सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: मैं एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, नाम से भी बिल्कुल हुआ है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरे पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हुए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था,
0: वो भी शुभ उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआत की दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या
0: इब्राहिम बलकार जी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल

0: रघु मंच के दिलीप कुमार से वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ, तो बचपन से ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से बकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के, प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छे ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: अनुराधा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: ये गाना सुनते हैं,
0: पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही जर, शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में थिएटर पहले देखते
0: हाँ, वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैन, पोलिट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसलिए

0: सौ दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे और फिल्मों का तो खैर नौरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था
1: जी, ये हुआ है लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ।
0: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी
1: वाह,
0: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें
1: जी,
0: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात। तो ये वो दौर देखा है जो कि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, जय भारती चल रहा है, फिल्म जा रहे हैं, कभी लता जी है, कभी आशा जी है, कभी रवि है, कभी मुकेश है, कभी मुन्ना दे है, तो ये सब चलता है। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
1: जी,
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
0: गाना चलता नहीं था
1: जी,
0: मैं गाता रहता
1: था।
0: तो घर वाले बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसको धुरही बनाने लगा और बाकी परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा था।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका।
0: हाँ, गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, तो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह
1: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी।
0: एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई, मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी,
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त चला रहा है हरिडा उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, परिकार कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूर पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर ये मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: बाबा
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, इसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, यहाँ पे जयपुर में देख चुके हैं,
1: वाह वाह।
0: तो उनकी एक्टिविटी में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया,
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम भड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा,
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौरान में जब आप,
0: तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमए रोड से पांच बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी,
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल,
0: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी, बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुर, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ,
0: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए मिसाल थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा में भी मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपका नाम सुना,
1: बिल्कुल,
0: गणपतलाल डांगी,
1: हाँ,
0: इनका हवा

0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं।
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये
0: जी। और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी,
1: क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रेस सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको। अच्छा। और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रेस सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है
0: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह हुआ है, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कपूर चंद कुलू साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है।
0: क्या बात है,
1: 19 नवंबर, हाँ 1980 में मैं तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर में, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
0: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे?
1: हाँ, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
0: जी,
1: इन लोगों के नाम से वो
0: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
1: और वहां पर पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
0: बिल्कुल
1: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मिशा
0: जी,
1: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकादमी और जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
0: बिल्कुल
1: पंजाब का जयपुर था, वो वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
0: जी।
1: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी
0: जी।
1: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
0: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
1: 1 साल
0: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
1: मैंने बताया ना, सोहन सिंह निशा
0: जी,
1: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
0: जी,
1: जो सुरजीत पात्र वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए सब विषय साहब को मिला।
0: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
1: हाँ, वो लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
0: जी,
1: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलवाला था उस वक्त गीतों के राजकुमार,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे
0: सुबह तक, तो लोग सुनते थे और सबसे तो लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
1: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
0: जी,
1: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, मैंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूं तभी आगे डाल दी।
0: अरे,
1: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
0: याद आ रहे। क्या वो गीत याद है आपको?
1: हाँ, जो है काफी पढ़ाई दौड़ दौड़
0: जी,
1: तो रेडियो में सुना उसको?
0: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: नवजीत का शुरू हुआ था तो ये अंत देख। बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से,
1: हाफती हवाओं से क्या बात है।
0: बात क्या करे कोई हाफती हवा

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी मेरे कहा गायक थे और संस्था चला रहे सब कुछ, लेकिन अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: और नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आते देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं, पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा हाँ? लगा है कि नहीं, क्या अच्छा रहा है
1: बस वो उनको सूचना जरूर, और हमारा संवाद माँ से होता था
0: जी।
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोल देते थे।
0: दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है और आपकी कामयाबी तो उन्हें कितना खुशी दी।
1: देखो ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए, क्योंकि हमने बचपन में आगे
0: बढ़ने सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, हंसते हो तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए,
1: मतलब खेल रहा कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना
0: हाँ।
1: किसी के साथ मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत कि आज से क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा हाँ। क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरों
0: में, बिल्कुल बिल्कुल,
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो छोटू की शिकायत
0: रोज आ रही है,
1: हर मतलब हर दूसरे दिन, हर दिन जो है आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी पिता तक पहुंच जाती थी बात, पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करेगा।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी के अंदर आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: घर में वो पारिवारिक कृष्ण के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ।

0: अपनी दुनिया उनकी,
1: अपनी दुनिया थी उनकी। आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, वो माँ थी जिनसे उन्होंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती है?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आपको अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं। मैं खुशहाल हूं जी।
0: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं। हाँ, एक था बचपन,
1: एक था बचपन,
0: क्योंकि ये जो बचपन की जो दिन है उनके नाम ये गाना है।
1: जी जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निर्णय मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंगलाई
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा,
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनिस में बताऊंगा उनके विवेक गुरु तो वे देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन
0: ऐसे रानी,
1: ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके
0: साथ ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा, लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधायक भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नादर सिंह जी भी, मैं हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: जी,
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं भी,
1: दिनमान, साप्ताहिक,

0: हिंदुस्तान, कादमिनी, तो ये मैं उन सबको चार्ज जाएगा सर वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था। तो बाकी लोग जो आके चले गए, मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं दो तीन घंटे निकल जाते थे। तो बचपन से पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात
0: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमर लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजार साहब, तो ये सब सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौली साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे,

0: मशाड़ों में देखा सुन, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अब मुरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजार साहब, तो ये सब सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकजदार साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है
0: जी। वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल।
0: हाँ,
1: ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस के लिए आश्चर्य की बात भी होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मेरे कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक पर रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुना, तो उन्होंने जो ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: बोले। और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
0: तो खुद मुश्किल भी है।
1: हाँ, मुश्किल
0: मुश्किल है, तो उसको निभा ले जाना और उसको, तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन।
0: हाँ, जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरे में पहचान दी, ये गजल
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स हर पल हादसा

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हौशा शेरों
1: स्वागत
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर।
0: ये बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला
1: जी।
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहे, अब नहीं
1: जी,
0: बहुत हो गया
1: जी,
0: है ना, ये आता है
1: सबके साथ, सबके साथ।
0: अरे पति खरा पति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं जब ये
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं। और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते हम लोग। तो ये शहर है जो सबका सच है।
1: वाह।
0: अभी वो गरीब सबका यहाँ है शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का है इंसान।

0: इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है।
1: क्या बात है सर, हम बहुत खुशनसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आपसे ये सुन रहे हैं।
0: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपने ये गजल सुनी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहां गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है कि मैं शुरू से होम सिक रहा, मतलब
1: जी जी बिल्कुल।
0: जलंधर में मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत हाँ। अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
1: जी,
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और सुन ली हुई, मान ली हुई, और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर। मैं वहां पर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, गुवाड़ी करते थे, वहां आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वही मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ
1: जी,
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है
1: जी।
0: और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल
0: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
1: जी जी,
0: इसमें मेरे प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिवर्तना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था
1: जी जी जी,
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, ये सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी जानकारी सब हुई, सब कुछ, एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था, जयपुर मेरे पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बढ़े थे,
0: पला बड़ा था,
1: जानते थे।
0: फिर उसने मुझे, मेरे कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सबके नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा वो सब जयपुर में। और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना
1: जी जी,
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह।
0: और उसको प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात उपलब्धि थी। ये बस उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने डायबिटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी,
0: हाँ उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किया, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में है
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग आम लोग समझ चुके हैं इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
1: हाँ।
0: ये
1: तो बहुत मुश्किल काम है,
0: हम बहुत मुश्किल, तो वही एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ। और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया, समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाड़ी गई उड़ीसा में
1: जी जी,
0: वो करते रहे और बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है।

0: सब कुछ है, लोग गाय के रूप में वो पॉपुलर है वहां पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है मतलब, अभी लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का उनके कंपोजिशन में भी उनके गाने में भी, तो मैंने उसको बाकायदा एक कोई फिल्म का तो था ही था तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है
0: क्योंकि वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया था।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहते थे।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका नाट्य समूह?
0: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ,
0: विकल्प अपने रंग से चलता रहा, बीजी हम लोग करते भी रहे लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने आपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: मतलब बीजी हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो वाले से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: गूगल का
1: इंस्पेक्टर जनरल
0: वो नॉटिंग की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया,
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशन भी करनी है आपको लगातार।
0: हाँ, इसमें करने वाला बात नहीं था, अंदर से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
1: ये मैं करूं।
0: हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है अंदर से होता है
1: आप,
0: तो उसी तरह से चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर भी पोस्ट होती है
1: बिल्कुल,
0: है ना जी। जानते हो, और वो भारती में नहीं हो लेकिन मेन सेंटर्स में बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी जी,
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम है और ये आदमी कंपोज कर रहा। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो।
0: हाँ, मतलब ये होता नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो 4 कंपोजर यहाँ स्टाफ में मौजूद है और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से मैं कंपोजर भी रेडियो पर मतलब फिर गाने भी हुए सब कुछ हुआ।
1: हाँ,
0: मैं बताऊँ कि जो महावीर वर्मा का गीत मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये सब मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था
1: जी,
0: हम लोग 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता
1: हाँ,
0: किसी के लेके उसको वो पढ़ता था और गीत होता था कोई मुआदक गाता था, तो इस तरह का प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की।
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया, स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी

0: था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के महफिल।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर।

का काशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार

0: की गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 30,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। गुलामी फिल्म से सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये डुएट गीत। गायक है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ, सुधा मल्होत्रा और अनवर का गाया ये अगला गीत है तर्ज एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बोल संतोष आनंद की फिल्म का नाम प्रेम रोग।

साहिर की रचना थी, संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। काला पत्थर फिल्म के गीत में आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। कहीं आप ईटिंग डिसऑर्डर्स के शिकार तो नहीं है? जानिए लक्षण और उपचार इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। ईटिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट यानी ईटिंग डिसऑर्डर एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति कभी तो जरूरत से भी ज्यादा खाता है, कभी बहुत ही कम खाता है। खाने की ये आदत सेहत को बुरी तरह प्रभावित करती है। सभी लोगों की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती है। कुछ लोग हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा सतर्क होते हैं कि एक एक बाइट की कैलोरी काउंट कर लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने को काफी तरजीह देते हैं। ऐसे लोग हर वक्त कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं ताकि उनकी सेहत बनी रहे, लेकिन लोगों की इन आदतों का सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इन्हीं आदतों को ईटिंग डिसऑर्डर यानी खान पान से जुड़ी बीमारी कहा जाता है। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति कभी तो जरूरत से भी ज्यादा खाता है, तो कभी बहुत ही कम खाता है। इतना कम कि उसका वजन कम हो जाता है और बॉडी मास भी घट जाता है। कई लोग मोटापे से निजात पाने के लिए न सिर्फ खाने से परहेज करते हैं, बल्कि शरीर में मौजूद कैलोरी को घटने के लिए हानिकारक तरीकों का सहारा लेते हैं, जिससे बुरा असर पड़ता है। आप भी अपने खान पान की आदतों से परेशान हैं, तो हो सकता है आप भी ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं। जाने कैसे इस परेशानी से निजात पाई जा सकती है इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। डियर फ्रेंड्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स से बचने के लिए रोजाना तीनों वक्त का खाना जरूर खाएं। तीनों टाइम पौष्टिक आहार लेने की कोशिश करें। सही समय पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें। अगर आपको कम खाने की आदत है, तो आप एकदम अपनी खाने की आदत में सुधार नहीं कर सकते हैं। आप धीरे धीरे खाने की आदत डालें। अपने खाने में दही, फ्रूट्स, छाछ के अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल करें। ब्रेकफास्ट न करने का मन

तो एक रोटी खा लें। धीरे धीरे खाने की मात्रा को सामान्य करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको सही खान पान की आदत हो जाएगी। कई लोग दोस्तों और अन्य लोगों के प्रेशर में आकर खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें। लोगों की बातों पर ध्यान न दें और एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करें। जबरदस्ती खाने की आदत को बदलें। हर वक्त खाने से होने वाले फायदे के बारे में ही नहीं सोचें। जब भूख लगे तब खाएं, सही वक्त पर खाएं। ऐसा करने से न सिर्फ खान पान संबंधी बीमारी दूर हो जाएंगे बल्कि आप हेल्थी भी हो जाएंगे। नियमित तौर पर थोड़ी मात्रा में कुछ हेल्थी खाने की आदत डालें। ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति में खान पान संबंधी बीमारी किस तरह की है और उसका लेवल क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर के लिए कई तरह की थेरेपीज मौजूद है, जिसमें आर्ट थेरेपी, रिक्रिएशन थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी प्रमुख है। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी, फैमिली थेरेपी और इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी भी की जा सकती है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये लंबे प्रोग्राम के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए है। इन्हें किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेकर ही फॉलो करें आप। भोजन विकार के अनेक लक्षण हैं, जिसे इस विकार को आसानी से पहचाना जा सकता है और समय रहते ही डॉक्टर की सलाह पर उपचार भी किया जा सकता है। भोजन विकार के सही लक्षण अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस लम्हे प्रोग्राम में। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अधिक भोजन करने व भोजन न करने के कारण व्यक्ति के शरीर का वजन बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है। इस विकार के कारण व्यक्ति को थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना आदि समस्या होने लगती है। व्यक्ति अपने शरीर के आकार और वजन के बारे में अधिक सोचता है। भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर के कई प्रकार है। जब व्यक्ति भोजन को अधिक खाने लगता है और भोजन के प्रति काबू नहीं रहता है, तब व्यक्ति को अधिक भोजन का विकार या ईटिंग डिसऑर्डर होने लगता है। इस विकार से ग्रस्ती व्यक्ति भूख न होने पर भी अधिक भोजन कर लेता है, जिसके बाद उन्हें बेचैनी, जी मचलना जैसे संबंधी परेशानी होने लगती है। बुलिमिया विकार से ग्रस्त व्यक्ति कम समय के अंतराल में अधिक भोजन करने लगता है या बार बार अधिक भोजन करने लगता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में जोखिम या हानिकारक स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति भोजन कम करता है या वजन कम करने के लिए कई बार भूखा भी रहता है, जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना बढ़ने लगती है। इसे ग्रस्त व्यक्ति वजन कम करने के लिए गतिविधि करना, भोजन कम करना आदि का प्रयोग करता है और अपने वजन को लेकर चिंतित रहता है। अनुवंशिक कारक की वजह से व्यक्ति अधिक भोजन करने लगता है, जिससे भोजन विकार से जोखिम की समस्या बढ़ने लगती है। जिस परिवार में इस विकार का पारिवारिक इतिहास हो, तो उस परिवार के सदस्य को भोजन विकार होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब व्यक्ति को अन्य कारणों की वजह से तनाव होने लगता है, तब वो नियमित रूप से भोजन नहीं करता है, जिससे भोजन विकार होने की संभावना बढ़ने लगती है या व्यक्ति को भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का वजन अधिक हो जाता है, तो वह वजन कम करने के लिए डाइटिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें भोजन कम करता है, किसी समय भूख रहना आदि शामिल है। इसके कारण भी भोजन विकार की संभावना बन सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर से बचने के लिए अनेक उपाय है जिससे आप विकार से बच जा सकते हैं। ये सब बचाव के उपाय मैं आपको लम्हे प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। भोजन विकार से बचाव के लिए प्रत्येक दिन में भोजन नियमित रूप से करें व दिन के तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम को स्वस्थ आहार लें व जरूर या भूख से अधिक भोजन करने से बचें। व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में पौष्टिक आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और वजन भी नियंत्रित रहता है। व्यक्ति को जबरदस्ती भोजन करने से बचना चाहिए और समय के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। भोजन विकार के लिए दवाइयों से ज्यादा थेरेपी अधिक मददगार साबित होती है। मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर की सलाह पर भोजन विकार का उपचार संभव है। दोस्तों, व्यक्ति को प्रत्येक दिन स्वस्थ आहार या भोजन करना चाहिए व प्रत्येक दिन में भोजन का नियमित समय और शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और भोजन विकार की समस्या भी दूर होती है। ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह

0: दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर भोजन विकार के प्रकारों के अनुसार दवाइयों की सलाह देते हैं। भोजन विकार से ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने के लिए परिवार के सदस्य की मदद ली जाती है। इसे है पारिवारिक थेरेपी या परिवार के आधारित थेरेपी कहते हैं। इसमें फैमिली मेंबर्स को ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्तियों का ध्यान रखने के लिए नियमित रूप से भोजन करने, स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए कहा जाता है। इससे भोजन विकार से ग्रसित व्यक्ति की दिनचर्या में बदलाव आता है और भोजन विकार की समस्याएं दूर होने लगती है। ईटिंग डिसऑर्डर से बचने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ आहार लेना, दिन में 3 समय भोजन करना, अधिक भोजन करने से बचना और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करने से इस विकार से बचा जा सकता है। तनाव या डिप्रेशन के कारण भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि तनाव से ग्रसित व्यक्ति को भूख नहीं लग पाती है या वह तनाव के कारण के भोजन नहीं करता है, जिससे भोजन विकार या ईटिंग डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य

0: गर्मी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो बिमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी,
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं

0: हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लो पानी बच्चों, पानी पी लो। ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ हाँ ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा आप कौन है?
2: मैं

0: पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन हैं आप?
0: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
4: हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
5: चलो।
6: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
4: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
6: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
4: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दूंगी तुम्हें,
4: पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
4: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है, पसंद है, सबसे अच्छा भी है।
5: कौन सा फल है?
4: नहीं समझी?
1: नहीं।
4: अच्छा तो फिर सुनो।

0: अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है
1: अरे कोई
0: ना?
1: खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
0: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
3: लाओ अम्मा।
0: लो
1: गर्मी अम्मा। हाँ। आप बहुत अच्छी है।
0: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: You just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली है।
3: जरा उधर देखो।
2: किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।

0: काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
1: हाँ।
0: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तू देखो।
1: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
0: हाँ।
1: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
0: हाँ।
1: कोई जासूस तो नहीं? वर्ण दो से।
0: हाँ, आने दो, आने दो।
2: ए, कौन हो तुम? रुका, रुका। जाओ वहीं रुक जाओ, रुका।
3: कौन हो तुम?
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
4: साहब, साहब, दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
4: सर, हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
4: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
4: साहब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पे जमा है।
0: क्या?
4: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
4: साहब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
4: साहब, मेरा गाँव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
5: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
6: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
5: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
6: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
5: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
6: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
5: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि

0: कि ये सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी, लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
0: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
4: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
4: जी सर।
0: उधर से। हाँ।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
4: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
4: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
4: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
0: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाई ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
5: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
4: जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
4: सर।
2: कोई शक?
4: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
5: यस सर।
0: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
6: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
6: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
6: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी।
6: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
6: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर।
6: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
6: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे
0: धीरे धीरे
6: दबे पो, बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
0: रेंगेंगे। जी सर।
6: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं।
2: अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
5: फायर!
7: माता की जय!
1: और इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। काकसर और बटालिक।
0: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
1: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
0: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज

0: राजकुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
1: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग,
5: उमंग। अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 बजन वाले ने कुछ पलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार रिले करांगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
6: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
7: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
6: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार

0: अने आलू प्याज फल सब्जियों तिलहन अनाज पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोतों हुने गैर फिल्मी गीतों अनु सुनवा रहे हैं स्वरूप खान की आवाज़ें।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार जीते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय चुनाव की जीत को भाजपा में जनता का विश्वास और जन केंद्रित नीतियों की जीत बताया। हिसार जिले के उकलाना जिले पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी विजय रही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। पंचकुला क्षेत्र का परिणाम 85.73% रहा। और अंबाला पुलिस ने शाहबाद लाडवा रोड से एक मोटर यार्ड में खड़ी गाड़ी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय चुनाव के परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता के विश्वास और जन केंद्रित नीतियों की जीत बताया है। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों का केंद्र और राज्य सरकार में विश्वास बढ़ा है। आज निकाय चुनाव का परिणाम उसी विश्वास का प्रतीक है।
2: आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव। एक तरफा लोगों ने वोट कमल के फूल को दिया। 3 के 3 मेयर, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, उनका चेहरे से नकाब उतरा।
1: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ की राजनीति करता है, इसलिए अब जनता को उन पर विश्वास नहीं रहा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने लोगों का भाजपा को नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के लिए आभार जताया।
3: हरियाणा के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जानदार और शानदार जीत की हरियाणा की प्रजा को, हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। यह जीत केवल सामान्य नहीं है, बल्कि अजय और अभेद्य हरियाणा के अभियान के सोपान की जीत है। मैं मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी के नॉनस्टॉप हरियाणा के प्रतिबद्धता की जीत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है शहरों के विकास के लिए।
1: अंबाला नगर निगम के लिए महापौर पद की प्रत्याशी का चुनाव अक्षता सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर को 21,358 वोट से हराकर जीत लिया है। अक्षता सैनी को 52,794 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर को 31,436 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार सोनिया चौधरी को 21,730 वोट प्राप्त हुए और 1,691 लोगों ने नोटा को वोट दिया, अर्थात किसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया। वहीं 20 वार्ड के सदस्य के चुनाव में सोना में भाजपा ने 3 पर कांग्रेस और 1 वार्ड से आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अपनी जीत पर अक्षिता सैनी ने अंबाला शहर की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे अंबाला के लोगों की जीत है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 36,200

0: 52 मतों के अंतर से विजयी रहे। उन्हें कुल 78,544 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 32,292 वोट प्राप्त हुए। पंचकुला नगर निगम के कुल 20 वार्डों में 17 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 वार्ड में निर्दलीय और 1 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। सांपला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण कोच ने 686 वोट से जीत हासिल की। प्रवीण कोच को 4,391 वोट, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अंकित को 3,704 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा 6,200 वोटों से जीत गए। भाजपा के अजय जांगड़ा को 9,392 वोट मिले, जबकि बाबूलाल लांबा 3,156 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत नगर निगम में महापौर पद के उम्मीदवार राजीव जैन भी चुनाव जीत गए हैं। राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल दीवान को 23,247 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की। वहीं सोनीपत के 22 वार्डों में से 16 वार्ड में भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि 4 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और पूर्व मंत्री कविता जैन ने भाजपा की जीत का श्रेय भाजपा सरकार की नीतियों को दिया। श्री मोहन लाल बड़ौली ने कहा,
1: हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो उस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम किया है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।
0: हिसार जिले की उकलाना नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी ने जीत दर्ज की है। रीमा सोनी ने निकिता गोयल को 2,806 वोटों के अंतर से हराया। रीमा सोनी को 7,078 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को 4,272 वोट हासिल हुए। जीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी ने कहा कि ये जनता की जीत है।
2: ये मेरे अकेले का जीत नहीं है, ये मुझे जिन्होंने आशीर्वाद दिए सबके सहयोग और सबके साथ की जीत है जी। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी उकलाना की जनता का, पुलिस प्रशासन का और सभी पार्टियों का मैं दिल से धन्यवाद कर।
0: हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड और एक तरफा जीत के बाद रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शमशेर सिंह खरक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी नीतियों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली के संगठनात्मक मार्गदर्शन में भाजपा ने जनता का भरोसा और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों के महापौर पद सहित कई वार्डों में भाजपा की शानदार जीत तथा रेवाड़ी, सांपला सहित अन्य क्षेत्रों में मिली सफलता ये साबित करती है कि हरियाणा की जनता अपरिवारवाद, झूठे वादों और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार चुकी है। जनता विकास, पारदर्शिता और सुशासन की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है, जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आज घोषित 12वीं कक्षा के नतीजे में देश के 22 क्षेत्रों में पंचकुला क्षेत्र 12वें नंबर पर रहा। इस क्षेत्रीय अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि

पंचकुला क्षेत्र में इस बार परिणाम 85.73% रहा। उन्होंने बताया कि पंचकुला क्षेत्र में इस बार 75,248 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। पंचकुला क्षेत्र में हरियाणा के 11 जिलों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। अंबाला पुलिस के विशेष कार्य बल ने शाहबाद लाडवा रोड स्थित चीनी मिल के सामने महादेव मोटर यार्ड में खड़ी एक गाड़ी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। इस मोटर यार्ड का मालिक गांव तंगोर निवासी सूर्य प्रताप पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ के एक अधिकारी दिलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी सूर्य प्रताप को पहले गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 2 जिंदा बारूद बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार जीते। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दी खास खबरां। प्रधानमंत्री वल्लों ईंधन दी बचत दी अपील तो बाद केंद्र ते राज सरकारां ने उपावां नूं लागू करना तेज कीता। पंजाब ते राजपाल दे दफ्तर विच वी वाहनां दी वरतों च कटौती। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने बारहवीं जमात दी बोर्ड परीक्षा दे नतीजे ऐलाने। कुड़ियां ने एक बार फिर बाजी मारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब दे इक लोड़ींदे नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शेरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग वल्लों पंजाब च अज ते भलके लई तेज हवावां ते बारिश दा येलो अलर्ट जारी। आईपीएल क्रिकेट विच अज शामी 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू दा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। पश्चिमी एशियाई टकराव कारण दुनिया भर विच पैदा हुए ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों ईंधन की बचत के उपावां की अपील तो बाद केंद्र ते राज सरकारां ने इन्हां उपावां नूं तेजी नाल लागू करना शुरू कर दिता है। प्रधानमंत्री ने आप भी हाल ही के घरेलू दौरे लई अपने काफिले के आकार नूं काफी घटा दिता है। अपील ते पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि अपने दफ्तर तो पेट्रोल डीजल बचाने लई वाहनों की वरतों घटा रहे ने। स्टाफ साइकिल ते जा परिवार के होर मैंबरां नाल आएगा अते बुधवार नू दफ्तर दी कार दी वरतों नहीं कीती जाएगी।
1: हमारा सारा स्टाफ और वो भी दिन तय है बुधवार का, अपनी साइकिल पे आएंगे या अपने किसी परिवार के लोगों को लेकर के आएंगे। हमारा यहाँ का जो फोर व्हीलर है वो बुधवार के दिन कोई उपयोग नहीं करेगा ऑफिस में ना। अभी पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर विद्यालयों से करेंगे।
0: एक कदम प्रधानमंत्री वल्लों नागरिकां नूं पश्चिमी एशिया संकट दरमियान दरामद कीते ईंधन ते निर्भरता घटा के ते चुगिरदे लई सुखावें विकल्पां नूं अपनांदिआं आर्थिक स्थिरता विच योगदान पाउण दीआं सत अपीलां दे मुताबिक। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड PSEB ने बारहवीं जमात दी बोर्ड परीक्षा दे नतीजे ऐलान दित्ते ने। PSEB दे चेयरपर्सन अमरपाल सिंह मुताबिक राज दे 3,817 स्कूलां विचों कुल 2,65,417 विद्यार्थियों ने परीक्षा दित्ती, जिन्हां विचों 2,42,755 उम्मीदवारां ने 91.46% दी पास फीसद नाल परीक्षा पास कीती। सिक्ख्या बोर्ड दे चेयरमैन ने वेरवे सांझे करदिआं दस्सिआ कि 3,817 स्कूलां दे 2,65,417 विद्यार्थी इस परीक्षा विच बैठे सन। उन्हां दस्सिआ
2: इस प्रीख्या विच पहले तिने विद्यार्थियों के नंबर 100% ने 500 विचों 500 तिने विद्यार्थी स्पोर्ट्स पर्सन भी है। पहले नंबर ते सुपनीत कौर, पिता का नाम राज सिंह, गुरुकुल अकैडमी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उबा जिला मानसा। दूजे नंबर ते रही सुहानी चौहान, पिता का नाम ललित चौहान, BCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल फोकल पॉइंट लुधियाना। तीसरे स्थान ते रही दिवानशी, पिता का नाम विनीत जौहर, तेजा सिंह सुतंत्र मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला पुरी लुधियाना। पहली विद्यार्थन साइंस ग्रुप की है, दूजी ते तीजे नंबर दी विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज ग्रुप की है।
0: परीक्षा विच तिन्नों टॉपर कुड़ियां ने जिन्हां ने 500 विचों 500 यानी 100% अंक प्राप्त कीते ने। विद्यार्थियों की पोजीशन निर्धारित करने लई इह मापदंड वरत्या गया कि किसकी उम्र घट है। अव्वल आउण दी सुपनीत कौर ने आकाशवाणी नाल अपनी खुशी जाहर की थी।

0: डिग्री सेल्सियस तापमान नाल सब तो गर्म स्थान रहा, जबकि हरियाणा दी सिरसा विच वध तो वध तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईपीएल क्रिकेट विच आज रायपुर विच रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु दा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होगा। यह मैच शामी 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर च खास खबर एक बार फिर, प्रधानमंत्री वालों ईंधन की बचत की अपील तो बाद केंद्र ते राज सरकार ने उपावां नूं लागू करना तेज किया। पंजाब दे राजपाल दे दफ्तर विच भी वाहनों की वरतों च कटौती। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात की बोर्ड प्रीख्या के नतीजे ऐलाने। कुड़िया ने एक बार फिर बाजी मारी। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब के कलुड़न के नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शेरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग वालों पंजाब च अजे भलके लिए तेज हवावां ते बारिश का येलो अलर्ट जारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। हुण सुनो पंजाबी गीत। पंजाबी गीतां दे प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है श्रोतियों। प्रोग्राम दी शुरुआत असी कर रहे हां इस गीत नाल। गीत नूं गाया है मिस पूजा ने।

आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले श्रोते तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीत एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। गैग स्टूडियोज ते संगीत विच तुहानू सुनवा रहे हैं। यह नगमा गायकी सतिंदर सरताज दी है ते गीतकार ने हरिंदर कौर।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोतो जयमाला प्रोग्राम लिए बस थोड़ा इंतजार करो, प्रोग्राम से विविध भारती मुंबई तो लेकर आगे।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूं अनुराधा, आपके आज के संगीत के सफर की साथी। लीजिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: वीर जारा फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर ने इसे लिखा। और अब अगला गीत कैलाश खेर की आवाज में भारतीय सेना गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: देव दर्शन धूप। देव दर्शन धूप।

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, जावेद अख्तर ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। सागर फिल्म से ये गीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा और आरती बर्मन का संगीत। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में प्रेम पुजारी, फिल्म का नाम है।

0: कौन है भाई?
1: क्या है जी, कौन है? मुझे तो डर लग रहा है।
0: अरे बिल्ली होगी, सो जाओ।
1: नहीं जी, एक बार उठ के देख तो लो, तुम डर तो नहीं रहे?
0: तुम भी क्या बात करती हो, मैं भी नहीं डरता हूँ, देखता हूँ। अरे
1: क्या?
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना बिल्ली होगी, वही थी।
1: तो इसमें चीखने की कौन सी बात थी, डर गए क्या?
0: अरे नहीं, वो अचानक कूदी ना तो चीख निकल गई।
1: मैं तो कहती हूँ जी, मुझे तो बहुत डर लगता है।
0: तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही।
1: वो बात नहीं, यूं भी दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं अकेली रह जाती हूँ, शाम को भी कभी कभी देर से आते हो, ऐसे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ।
0: तो मैं क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना।
1: वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो पड़ोस वाली मिसेस सिंह है ना, कितने चैन से रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, चाहे घर पर कोई हो या ना हो।
0: वो कैसे?
1: उनके पति ने जब से अल्सेशन कुत्ता पाला है, तब से वो सारा घर उसी कुत्ते के भरोसे छोड़कर चली जाती हैं।
0: अच्छा, ये बात है।
1: हाँ, और वो कुत्ता भी बहुत खतरनाक है, किसी अजनबी आदमी को तो घर के पास फटकने तक नहीं देता।
0: तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हारा मतलब क्या है?
1: सुनो जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं, एक अच्छा सा ला देना, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी।
0: अच्छा बाबा, ला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है।
1: नहीं, पहले वादा करो कि तुम एक कुत्ता ले आओगे। कितना अच्छा होगा जब मैं भी मिसेस सिंह की तरह कहीं भी आ जा सकूंगी, कुत्ता घर की रखवाली करेगा। बोलो, लाओगे ना?
0: हाँ हाँ, ले आऊंगा, अब तो सो जाओ, वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा।
1: ओके डार्लिंग, गुड नाइट। ओहो, मिसेस सिंह और मिसेस शर्मा, आइए आइए।
2: हेलो गीता, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक, आइए आइए, अंदर आइए।
2: सुना है आपने बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाला है,
1: इसीलिए हमने सोचा चलो देखकर आते हैं।
2: और फिर हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, पहचान जाएगा तो काटेगा भी नहीं।
1: हाय, मेरा तो बस 14 सुई से दिल घबराता है, बड़ा दर्द होता है।
2: अरे मिसेस शर्मा, अब जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, अब तो कुत्ते को पहले ही एंटी रैबिक सुई लगवा दो तो फिर कुछ भी असर नहीं होता।
1: अरे भाई, काटने के बाद भी 14 सुई का क्या भरोसा, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फिर तो आदमी भौंक भौंक कर दम तोड़ता है, पानी देखते ही काटने को दौड़ता है, और फिर हाइड्रोफोबिया।
2: अच्छा, कहाँ लगती है ये एंटी रैबिक सुई?
1: ये तो किसी भी पशु चिकित्सालय में लग सकती है, इसीलिए मैं तो कुत्ता पालती ही नहीं, यूं भी जानवरों से मुझे बड़ी नफरत है। हमारे पति देवी बड़े बहादुर हैं, क्या मजाल कोई दरवाजे पर फटक जाए।
2: उनकी तो मुझे देखकर अच्छे अच्छों की घिघी बन जाती है।
1: हाँ, आपने सच्ची कहा है मिसेस सिंह, उन्होंने तो मुझे कह रखा है कि रात को अगर लगे कि कुछ चोर आया है तो बस कह देना पहलवान जी वो अपना डंडा कहाँ रखा है, और बस चोर डर कर अपने आप ही भाग जाएगा।
2: मिसेस सिंह, आपके कुत्ते का नाम क्या है?
1: बाय द वे, मेरा कुत्ता नहीं कुतिया है, कुत्ते से ज्यादा तेज होती है, उसका नाम लूसी है।
2: कितना प्यारा नाम है।
1: जानती हो गीता, मेरी कुतिया पर रोजाना 200 रुपए खर्च होते हैं, सवेरा होने से लेकर रात सोने तक उसकी देखभाल होती ही रहती है, अच्छे साबुन से नहलाना, बाल संवारना, परफ्यूम लगाना, बिस्किट दूध वगैरह वगैरह।
2: हाय मिसेस सिंह, कितनी खुशकिस्मत है आप, इतना प्यारा चौकीदार मिला है आपको,
1: और वफादार इतनी कि देखते ही तुम हिलाने लगती है।
2: मैंने तो जब भी अपने पति से कहा कि हमें भी ऐसा ही एक वफादार कुत्ता ला दो तो बस भड़क उठे, वैसे तो वो मेरा कहना बहुत मानते हैं।
1: अरे भी गीता, तुम्हारा कुत्ता है कहाँ, हम तो उसे देखने आए हैं,
2: अभी बुलाती हूँ।
1: प्रीतम,
2: अरे हमने कुत्ता बुलाने को कहा है।
1: ये मेरे कुत्ते का ही नाम है भाई, और कोई नाम लेने पर वो सुनता ही नहीं, प्रीतम कहते ही दौड़ कर आता है।
2: प्रीतम आजा, आओ आओ आओ।
1: आए हाय,

आज सुनिए झलकी ना बाबा ना। लेखक है संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीख।

0: कितना प्यारा कुत्ता है, बरसा सफेद। जानती है आपकी डॉग शो में इसी नस्ल का कुत्ता फर्स्ट आया है।
1: वाह, आओ
0: आजा आजा। ऐसे नहीं प्रीतम, आओ आना आओ।
1: अरे वाह,
0: इतना समझदार है,
1: बहुत प्यारा कुत्ता है।
0: अरे वाह, ये तो मेरी गोद में बैठ गया। आपके पास तो यूं बैठा है जैसे पहले की पहचान हो।
1: नहीं जी, जानवरों को प्यार से पुचकारो तो फिर वो दुम हिलाते ही रहते हैं।
0: आपको तो इस बात का बड़ा तजुर्बा है मिसेस सिंह।
1: अरे ये क्या, छी छी, इसने तो मेरी 1000 रुपए की साड़ी ही खराब कर दी।
0: बहुत ही बदबू है, बड़ा बेशर्म कुत्ता है। ये जानवर होते ही ऐसे हैं, जहाँ पाया वही गंदा कर दिया।
1: आज ही तो निकाली थी ये साड़ी। हाय, अब मैं घर कैसे जाऊंगी।
2: ऐसा भी क्या है मिसेस सिंह, थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए।
1: नहीं जी, पानी वानी क्या, अब तो घर जाकर ही साफ करूंगी। चलो भी मिसेस शर्मा।
3: ओफो, आज तो बहुत थक गया। सुनो, एक कप चाय तो पिला दो।
4: दूध नहीं है।
3: क्या कहा?
4: हाँ, अपना प्रीतम पी गया, उसके लिए भी तो चाहिए। और सुनो, तुम उसको अभी अस्पताल ले जाकर एंटी रेबिक सुई तो लगवा दो। जानते हो, किसी दिन उसका दांत भी लग गया तो आदमी भौंक भौंक कर मरेगा। और हाँ, एक अच्छा सा साबुन, कंघी, तौलिया, बिस्किट वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ले आना। आते वक्त दूध भी ले आना, तभी चाय भी बनेगी।
3: गीता, इस वक्त मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं आराम करूंगा।
4: जाओ ना, सोचो किसी दिन उसका दांत हमें या तुम्हें लग गया तो। मिसेस सिंह कह रही थी, हाय भगवान वैसा ना करे।
3: मैं अब कहीं नहीं जा सकता, इतनी सारी फरमाइशें, अपने लिए तो कुछ हो नहीं पाता, ऊपर से कुत्ते का खर्चा।
4: तुम नहीं जाओगे?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
4: यही फर्क इंसान और जानवर में होता है। देखो, हमारी अभी कितने दिनों की पहचान है, फिर भी कितने प्यार से दुम हिला रहा है। किसका है जी?
3: तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
4: हाय पापा, शादी के बाल पहली बार आ रहे हैं। ऐसा करो, दूध ले आओ ना, पापा को तो हर पल चाय चाहिए।
3: मैं तो नहीं जाऊंगा, सारा घर बदबू से भरा पड़ा है, हर जगह इस कुत्ते ने गंदगी कर रखी है।
4: वो तो क्या है जी, मैं सफाई वाली के भरोसे रह गई, वो आज आई ही नहीं। खैर, उसे मैं साफ कर दूंगी, तुम दूध ले आओ ना।
3: अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। मरता क्या ना करता, इनको भी आज ही आना था। हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ रहा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा।
4: हाय राम, बहुत थक गई, ये गंदगी साफ करते करते सिर चकरा गया। बदबू के कारण तो उल्टी सी लग रही है, अब तो कुछ करने को जी भी नहीं चाह रहा। लेकिन क्या करूं, पिताजी भी पहली बार आ रहे हैं।
3: हाँ। ये लो दूध, पहले मुझे चाय पिला दो।
4: अच्छा जी।
3: अरे
4: देखो तो, कौन है, क्या हुआ?
3: ये कुत्ता तो सर दर्द बन गया, अब पता नहीं क्या हुआ, कौन है?
5: अरे भाई मैं हूँ, अरे छुड़ाओ तो इस कुत्ते से।
4: पिताजी, अजी जल्दी छुड़ाओ वरना वरना काट खाएगा। हाय राम, खून लगता है काट खाया। हाय, अब क्या होगा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुरंत जाकर सुई लगवा दो। काट लिया ना। हाय पिताजी, मेरे पिताजी पहली बार तो बेचारे आए थे। हाँ जी, मिसेस सिंह कह रही थी कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर। हाय पानी देखते ही, हाय मुझसे तो कहा भी नहीं जाता, ये कुत्ता नहीं मौत का पैगाम है।
5: बेटी ये क्या कह रही है तू?
3: ये कह रही है ससुर जी कि कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर मरता है।
4: अब क्या होगा, अब तो आपको 1400 भी लगेगी, तुम डॉक्टर को बुलाओ जी।
5: डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर क्या?
4: पिताजी

0: आपको कुत्ते ने जो काट लिया है, ये खून।
1: अरे ये खून नहीं बेटी, ये तो दवा की शीशी थी जो फूट गई। कुत्ता मेरे ऊपर गिरा इसलिए फूट गई। अब सारे कपड़े भी खराब कर दिए।
0: तो इसने आपको काटा नहीं?
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं।
0: सुनो जी, तुम इस कुत्ते को अभी हटा दो।
2: लेकिन तुम जो अकेली रहती हो उसका क्या होगा?
0: ना बाबा ना, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन ये सफाई, ये देखभाल मुझसे ना हो सकेगी। इसको अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, दूर कर दो इसको।
3: अभी आपने झलकी सुनी ना बाबा ना। इसके लेखक थे संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक, और ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम

0: लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जी

राघव चैतन्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे एक विलन रिटर्न्स फिल्म से। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा। कौशिक और गुड्डू का संगीत।

0: मेट्रो इन दिनों से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और चित्रलोक के बाकी के नगमे एक अंतराल के बाद।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को, और HIV के

0: बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
1: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्वागत है। केके और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत बचना ए हसीनो फिल्म का नाम है।

मोहित चौहान की आवाज में ये गीत फिल्म ऊंचाई से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत खामोशियां फिल्म का नाम है। म्यूजिक जीत गांगुली का।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत खामोशियां फिल्म का नाम है। म्यूजिक जीत गांगुली का।

0: नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई

0: मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन

0: लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
4: देश की सुरीली धड़कन लीजिए कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए।

0: एक दूजे के लिए, ये था फिल्म का नाम और आनंद बख्श के लिखे बोल थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको, तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जाँच भी मुफ्त करवा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए। फिल्म चांदनी से ये गीत आनंद बख्शी के लिखे बोल शिव हरि का संगीत।

फिल्म चांदनी से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। ये गीत सुनिए फिल्म सिलसिला से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजें।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज़ से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूत।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थीं।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने BPO में HR की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी लेकिन ए आर रहमान के पास नहीं गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए आर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

पहलवान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

दीनदयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनीदयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज़ सीधे दिलों को छूती है।

बीनी दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

बीनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया

कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

बेनीदयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचाकर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनीदयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसके गवाह तो हम

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बिनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बिनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सकता है जो ता उम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ ना रह जाए। और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी से, न जीते बनता है न मरते बनता है, दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

कभी कभी कोई इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हाँ दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को? शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का

कभी कभी आपको रौंद कर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं।

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ CBSE ਨੇ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਰੀਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰੀਜਨਸ ਵਿੱਚੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਲਾਡਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕ ਮੋਟਰ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਖੜੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੈਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: हुण पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। सुरसांझ प्रोग्राम दे सारे श्रोतियां नूं साडा प्यार भरिया नमस्कार। प्रोग्राम दी शुरुआत असीं कर रहे हां सतिंदर सरताज दे नाल, संगीत जतिंदर शाह दा।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।

0: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, देसी क्रियू दी तर्ज़ च शामिल कर रहे हैं गोल्डी दा निभाया गीत बोल नरिंदर बाटती।

0: ਸ਼੍ਰੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़

0: रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तो अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानू इजाजत दिओ। जय हिंद।